जाने कहाँ गए वो दिन, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर से। रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हम साया से, हम पेश करते हैं दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा।

0: zomer aanbieden.
1: दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नज़रों की तरफ देख जमाने पे ना जा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हमसाया से, हमने पेश किए हैं। द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ससुराल से, आप सुनेंगे सताले ए जहां।

दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सताले ए जहां न खोलेंगे सुबह, फ्रॉम द मूवी ससुराल से हम पेश, यानी ससुराल से हमने ये गीत चलाए हैं, सारंगा तेरी याद में।

सारंगा तेरी याद में अभी आप सुन रहे थे दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में टिक टिक टिक मेरा दिल बोले। लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हम जोली से।

हाँ, तूने तूने तूने ओ सनम, अभी आप सुन रहे थे लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हम जोली से हमने पेश किए हैं। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली। लता जी के यानी लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, फ्रॉम द मूवी गुमनाम से हमने पेश किए हैं रफ्ता रफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, किशोड़ा आपको सुनाने वाले हैं।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे

रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में फ्रॉम द मूवी कहानी किस्मत की। हमारे गांव कोई आएगा, फ्रॉम द मूवी प्रोफेसर से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में, आशा जी आपको सुनाने वाले हैं।

हमरी गांव कोई आएगा, अभी आप सुनते थे फ्रॉम द मूवी। प्रोफेसर शहम ने पेश किया है, लता जी के साथ में आशा जी आपको सुनाने वाले थे। कांची रे कांची रे।

0: meer uitstraling.
1: अभी आप सुन रहे थे कांची रे कांची रे, प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के, फ्रॉम द मूवी हरे रामा हरे कृष्णा से हमने पेश किए हैं। लता जी के साथ में किशोरा आपको सुनाने वाले थे। बिल्लू है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मर जाने मर जाने।

मर जाने मर जाने, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बिल्लू से हमने पेश किए हैं बंटी और बबली। इसी फिल्म से हम आपको सुनाने वाले हैं आज कुड़िए चल कुड़िए नच बलिए, और गाने वाले हैं शंकर महादेवन के साथ में सोमिया राव और लॉय मेंडोंसा। चलिए मिलकर सुनते हैं।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 में आएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे आजा कुड़िए चल कुड़िए, और आप सभी को ये गीत सुनाने वाले थे शंकर महादेवन, सोमिया राव और लॉय मेंडोंसा। कबीर सिंह है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते मेरी उम्र के नौ जवानों।
2: किसी से प्यार किया?
3: किया।
2: कभी किसी को दिल दिया?
3: दिया।

कबीर सिंह से भी आप सुन रहे थे मेरी उम्र के नौजवानों। जाने क्यों उदित नारायण और अलका याग्निक आपको मिलकर सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है।

फ्रॉम द मूवी दिल चाहता से अभी आप सुन रहे थे जानी क्यों लोग प्यार करते हैं। उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया

0: द टाइटल फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी आप सुन रहे थे। गोरी है कलाइया तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।
1: अंकुर चड्डा का स्वयंवर शुरू किया जाए।
2: नंबर वन मेड इन चाइना राजकुमारी चुल्ली। इंग्लिस्तान से राजकुमारी गुलगुलु ग्लोरिया। दोनों देसी रानियों को पेश किया जाए।

अभी आप सुन रहे थे गोरी है गलाइयां तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लाल पीली अखियां।

फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी आप सुन रहे थे। जब भी देखूं बना ली लाल पीली अखिया, सरस हम देखे तो ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। गोरी है कलाइयाँ तू ला दे मुझे क्या हरी हरी चूड़ियाँ।

अभी आप सुन रहे थे एक मैशअप और आप लोगों से बातचीत करते हुए तो मेरा गला भी सूख गया है, तो चलिए ये गीत हो जाए अरे जालिमा, एक कोका कोला हो जाए, पिलाएंगे आप।

अभी आप सुन रहे थे सालिमा कोका कोला पिला दे, जरा सा ये हो जाए आप सभी के वास्ते।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुनी हमारी हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस एंड ब्लेस्ड संडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टिल नेक्स्ट टाइम।

0: Gateway Plus Radio. सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज।
1: जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और हमारा प्रोग्राम चलाना है, हमारा काम यही है, हमारा मोहब्बत भरी पैगाम। यहां से कुछ पुराने नगमे, कुछ नए गाने से आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। हम चलते तुरंत इधर चला मैं उधर चला, फिल्म के नाम है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन प्रीति सिन्हा इस फिल्म में काम किया है, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

इस है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है, चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है, चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिल वाला, कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जा है, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवानी और तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेख होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और दिव्या भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों, और ये गीत क्या होगा दोस्तों, ये कुछ प्यार भरी गीत है, और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

तेरी कमाल और इस गीत को अलका याग्निक ने और उदित नारायण ने और यानी कि गाया है और फिल्म के नाम है राजा। माधुरी दीक्षित संजय दत्त का ये फिल्म है दोस्तों, ये फिल्म है दोस्तों। और यहां से हम अपना कुछ प्यारे प्यारा प्यारे प्यारे लवली सॉन्ग भी आप लोग को हम सुनाएंगे। और कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो। जब अगर मोहब्बत में कोई और आ जाएंगे तो कैसे मनाऊंगा। और कहते हैं कि किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर तू मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इम्तिहान, वो इंतजाम रह रही है। एक बार फिर दोस्तों, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इल्जाम दे रही है। दोस्तों हम चलते गीत की ओर कि बोल मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। और इस गीत को आओ मिलकर सुना जाए, प्यार भरी गीतों के बहार प्रोग्राम हम लेकर चलते हैं। मैथिली मुकेश नाइटिंगेल के लता जी इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

मेरी तकदीर में क्या है और मेरी हम सफर अब तो बता। और फिल्म के नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है, आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं, मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज, और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज दोस्तों। और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है, हमारा फ्रिक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन्स दी डेंक ए हमारा रिवॉर्म कुछ भले नहीं मीन्स आज अंदेया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंसी ऑन लॉइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट। और हमारा फ्रिक्वेंसी है 195.93 MHz पर, और नहीं कनाल 8A DAB प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहाँ पर कि कहते हैं मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मरे तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ दोस्तों। मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ से हमारा प्यार भरी गीतों का और बाहर नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल के ओर, हम चलते हैं पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

और पल पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरें हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है और वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे जो निकलती ट्वेंटी का ये फिल्म है। मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें काम किया है। आओ चलकर और इस गीत को मजा लूटे।

चला हूं और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए है, प्यार का लम्हे अनजानी हो गई है। जहां पर फूल खिलते थे, जहां पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गए है। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का शायर।

मैं हर एक पल का शायर हूँ। और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है, और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शेर है। जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है। उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है। दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है। होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं। आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमारा चलते हैं। और कहते हैं, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिट इज गवेल्दिग मोय दोस्तों, कोर्ट मार हेल मोय। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरी और आपको हम यहाँ से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो, हम सबसे ज्यादा चाहने वाला मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो, हमसे ज्यादा चाहने वाला मिल गया तो खुश रहना। ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारी है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसमें शमी कपूर काम किया है, राइसी संगे पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाना है और ये है, ये गीत है, और मेरी मोहब्बत जवान रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेंगी यानी कि मोहब्बत कभी बुढ़ाते नहीं हैं, उम्र चले जाते हैं दोस्तों, लेकिन मोहब्बत जवान रहती है। ये हमारा पैगाम है रेडियो फाउन के माध्यम से, आओ सुना जाए।

और दोस्तों मेरी मोहब्बत जवां ही रहेगी। और ये है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ से हम और प्यार भरी हार्टब्रोकन सॉन्ग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई, मैंने हर लफ्ज का दिया जिसे मोहब्बत कहता है, मैंने हर लफ्ज कहा दिया कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दोस्त सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से ज्यादा की थी, तुमसे मोहब्बत तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से भी ज्यादा की थी, अब बात नफरत की है सोच सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, माना माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशीष जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और चला जाए फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं। दोस्तों प्यार का सागर फनी खती होंद एन एन सस्तक आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

प्यार की जिंदगी देने वाली। दोस्तों कितने लोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरे गीतों को चलाते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है और एक गीत भी लाया है। कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूँ, भूल तो जाऊं तुझे दोस्तों। और कहते हैं भूल तो जाऊं तुझे पर मेरे पास रहेंगे क्या कुछ, यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफ़र को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक हम एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जानी को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

0: कुमी और तुझको मेरा प्यार पुकारे, फिल्म के नाम है गुमराह। आशा भोसले महेंद्र कपूर का ये गाना है और म्यूजिक दिए थे रफी साहब ने। फिल्म का नाम था गुमराह। जिस फिल्म में काम किया सुनील दत्त, माला सिन्हा। और दोस्तों और ये प्यार भरी गीतों का बहार सॉन्ग हम आपको सुनाया है।
1: मित्रों, सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

दोस्तों, आज भी हमें कुछ अच्छा करने का एक मौका मिलता है। जैसे एक अच्छी बात, थोड़ी मदद, थोड़ा सब्र, ये वो काम है मित्रों जो दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। तो आज बाहर निकलें और किसी की मुस्कान की वजह बने मित्रों, किसी की मुस्कान की वजह बने। बेस्ट मैंसन ओक फंदा क्रैक व वेरन कांस ओम इट्स खुदस्तुन जो वसन फ्रेंडलिक वर्ड एन बीच हेल्प एन बीच खुदल दिट जैन द दादन दी द वेरल्ड मूयर माकन। बेस्ट मैंसन लातन वो एरोप ऐट खान एन फंदाह The reden zijn voor iemands glimlach. De reden zijn voor iemands glimlach. Beste mensen, zal dat niet mooi zijn?

साथियों, अगर भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं तो वो हमारा विश्वास मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। मित्रों, अगर वो देर करते हैं तो वो हमारा सब्र, वो हमारा खदल बढ़ाते हैं, और अगर वो जवाब नहीं देते तो वो जानते हैं कि हम उसे संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं। मित्रों, als God ons gebed verhoort, beste mensen, versterkt hij ons geloof. Als hij het uitstelt, versterkt hij ons geduld. En als hij niet antwoordt, weet hij dat wij het aankunnen.

भाई बहनों, नदी जब किनारा छोड़ देती है, ध्यान करना, नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है, मित्रों तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में, बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में मित्रों, तो जिंदगी की रास्तों को मोड़ देती है, जीवन ही अलग हो जाती है मित्रों। इसलिए किसी के दिल को दुखाओ मत, ना ठीक बात है। बेस्ट मैंसन वनीर अन रिवीर बैतन जैन उफर स्त्रे कान है जेल्फ द रोत्सन इन द रिवीर फॉर ब्रेजलन सेल्फ अन क्लेन क्वेस्टी कान अल्स देस ओन बहान द ब्लेफ द लोप फन एन लेफन फरांदरन दारम मुत मैं नीत क्वात विलग जैन ब्लेफ आल्टेड लीफ ब्लेफ आल्टेड आर्दग तेगन ओवर मैंसन। दैट इज द बेस्ट वॉट यू कैन डू लीफ मैंसन।

हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, दोस्तों, परमात्मा कहते हैं, भगवान बोलत है कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए प्रार्थना करो, जब जिंदगी शानदार हो प्रार्थना करो, और जब जिंदगी में घबराहट हो तो प्रार्थना करो। भगवान बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा राह प्रदर्शक यानि गाइड एक हिस्स बनकर रहूंगा। ये भगवान बोलते हैं मित्रों, बेस्ट मैंसन खुद जेख्त अल्स हैट लेवन मुइलक वर्ड बेत अल्स हैट लेवन गवेल्दिग इस बेत अल्स हैट लेवन फरवारंद इस बेत एन इक जल आल तैत ये गिट्स जैन। दैट सेग्ड द हेयर बेस्ट मेंसन। हू मूई इज दिट नीत है, मार वाई मुतन वेल फॉर ट्रॉवेन एंड हैबर।

साथियों, फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है। ध्यान कीजिए, सिर्फ हवा की दिशाएं में फैलती हैं, लेकिन एक इंसान की अच्छाई, आपकी अच्छाई या बुराई सभी दिशाओं में फैलती है मित्रों, सभी दिशाओं में। तो आप जानिए कि क्या कर्म कर रहे हैं, कौन सी कर्म कर रहे हैं मित्रों। द ह्योर फन ब्लूमन

dingen, beste mensen. Ik shant man. Ik shant man. Sabhi chunautiyon ke khilaaf hamara antim hathiyar hai. Isiliye hamesha shant aur tanav mukt rahe, beste mensen. Een kalm geest is onze ultieme wapen. Is onze ultieme wapen tegen alle uitdagingen. Blijf dus altijd kalm en ontspannen. Vooral ontspannen. Dosto, un logo par shabdon ko barbaad na karein jo aapki chuppi ke layak hain. आपकी चुप्पी के लायक हैं. कभी कभी सबसे शक्तिशाली बात कुछ भी ना कहना होता है. चुप रहो, लीफ मैंसन. फर्स्पिल खेन वोर्दन अन मैंसन दी ऑफ स्टिल्त फर्दीनन. सोम इस क्राख्तस्त ओम हेलमाल निच्स निच्स हेलमाल निच्स सेखन. Beste mensen, denk hier eens over na.

हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो अपनी जेब में तीन शब्द रखें, तीन शब्द रखें, प्रयास, सत्य और भरोसा। प्रयास बेहतर भविष्य के लिए, सत्य आपके काम में, भरोसा ईश्वर में। मित्रों, सत्य आपके काम में और भरोसा ईश्वर में, फिर सफलता आपके चरणों में होगी। बेस्ट मैनसन अल्श यदाख बखिन हाउ दन द्री वोर्दन इन ये जाक प्रोबेर वार है एन फरत्रावन प्रोबेर फॉर बेटर टुकोमस्त वार है इन ये वैरक एन फरत्राव ऑफ ये खोत दन लिख सक्सेस ऑन योर फुटन बेस्ट मैनसन ऑन योर फुटन। साथियों, हंसना जरूरी है सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमें खुश करती है, बल्कि इसके असल स्वास्थ्य खजौन थैत के लिए, मित्रों खजौन थैत के लिए भी है, क्योंकि यह आपके शरीर और आत्मा को ठीक करती है। हंसना, जरूर हंसना, और त्रैतर वाला हंसना नहीं, दिल खोल के प्रेम से हंसो मित्रों। लखन इस बलंगरेक बेस्ट मैनसन नित अलेन ओमदात हैत ओंस खुलिक माग मार ओग ओमदात हैत दात वैरकलक खजोंत हैत स्फोर देलन हेफ्त हैत खनीस्त लेखाम एन जिल हैत खनीस्त लेखाम एन जिल बेस्ट मैनसन ओंताओ वाते खजेक्त हैत।

ओम जय राम जय जय राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। एक बार फिर, हर बार फिर आपको स्वागत किया जाता है बहुत प्यार के साथ यहाँ से, जिस भजन प्रोग्राम में हम गोटा लगाते हैं और हर बार लगाते ही रहेंगे, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, ताकि हमारा दिन जो है वो ऊर्जावान रहे, पॉजिटिव रहे। दातु मैतन ब्रेड खलाख door het leven mag gaan en ook het uw dag mag beginnen. We hebben net Hanuman Chalisa kunnen luisteren en dan heb ik dit hierbij ook voor jullie Shiu Chalisa.

जी, मेरे सुनने वालों, यहाँ से हनुमान चालीसा के बाद शिव चालीसा हमने मिलकर और श्रवण की है, तो उसके बाद आपके लिए गणेश मंत्र जी, और वो भी 108 बार। आप सिर्फ सुनने से आपका दिन जो भी है वो बढ़िया से शुरू हो जाएगा और आपको ऊर्जा मिल जाएगा। ऊर्जा माने की इनर्जी।

108 बार यहाँ से हमने श्रवण कर ली है श्री गणेश मंत्र। हाँ जी, पूरा 108 बार। उगता हुआ सूरज मेरे प्यारे सुनने वालों, भक्त प्राणियों, मेरे उगता हुआ सूरज हम सभी के लिए बहुत खुश रहे, खुशहाली लाए है। फूलों की खुशबू, ये जो दिन है ये खुशबू हम सभी को मिले। गुड मॉर्निंग के साथ सुबह तुम्हारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में रोशनी आए। और इस बार आपके लिए है कुबेर मंत्र। हाँ, कुबेर मंत्र, कुबेर जी जो खजानती है, पैनिंग मेस्टर है हम सभी के लिए, जिसके खातिर हम सुबह उठते हैं और हाँ अपने नौकरी पे जाते हैं पैसा कमाने के लिए। और पैसा का खजाना जो है वो कुबेर जी है, तो उनको भी हम याद कर लेते हैं।

अति सुंदर अति सुंदर जो हम यहाँ से कुबेर जी को भी अपने जीवन में शामिल कर दिया गया है, और कुबेर जी तंदुरुस्ती के साथ हमें भी कुबेर जी चाहिए खजांती। ऐश्वर्य वैभव हमारे जीवन में भी एक अंश है। आपके लिए इस बार शिव जी की स्तुति।

सुबह की धूप यादों का एहसास दिलाती है। जी हाँ मेरे सुनने वालों, की सुबह की धूप यादों की एहसास दिलाती है। हर खुशबू एक नया जादू चलाती है।

हाँ, गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया अवश्य अवश्य। सुबह सुबह सुबह सुबह सूरज का साथ हो मेरे दोस्त। हाँ, सूर्य उगता है कितना अच्छा लगता है ना, सुबह मिलता है देखने के लिए तो कितना खुश हो जाता है दिल। हाँ, कहते हैं कि सुबह सुबह सूरज का साथ हो, गुनगुनाते पंछी की आवाज हो, क्या खूब है। और हाथ में कॉफी चाय और यादों में कोई खास हो, जैसे आप मेरे दोस्तों। हाँ मेरे भक्त प्राणियों, उस सुबह की पहली याद तो आप है, इसलिए यहाँ से ये स्पेशल प्रोग्राम भक्ति में भक्ति भजन जो है इसमें हम गोटा लगाते हैं ऊर्जा पाने के लिए, दिन की शुरुआत करने के लिए, सिर्फ आपके लिए।

श्री राम जी की स्तुति यहाँ से हमने भी श्रवण कर ली है, आपके लिए शामिल कर दिया है आप ही का भजन माला प्रोग्राम में। रात गुजरी मेरे दोस्त, रात गुजरी फिर महकती सुबह आई, और दिल धड़का फिर आपके याद आई, और यहाँ से आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम जो हर रोज आप सुनते हैं, इस बार भी, आज भी और आने वाले कल में जो है, पल में जो है, आपके लिए जरूर हमेशा पेश होगा। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो द एन है एख्त हेल माल

हम सबके कल्याण, कितना अच्छा बात है। उठकर तो देखिए जा मेरे प्रिय भक्तजनों के, उठकर देखिए सुबह का नजारा। ओहो, हवा है, ठंडी मौसम, वो प्यारी प्यारी मौसम। सो गया चांद, छुप गया हर एक तारा। स्वीकार कीजिए आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से गुड मॉर्निंग। सुप्रभात आप सभी को।

हे सूर्य देवाय, हे सूर्य देव दर्शन तेरा दर्शन। सूर्य देव के दर्शन करने से दिन कितने अच्छे होते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुशियाँ आ जाता है। सुबह का उजाला लेकर आया है आपके जीवन में, हम सब के जीवन में खुशियाँ और प्यार। कि आपके होठों पर आप जागते हो तो कितना

हम सब के लिए खुशी। जो खुशी लेकर आए हैं, इस खुशी को और इस खुशी का कभी शाम ना होए। ये खुशी जो है हरदम हर वक्त जवान।

जी हाँ, सूर्य देव का नाम भी आदित्य है, ऐसे अन्य नाम भी है हमारे सूर्य देव के। रवि भी सूर्य देव का।

जीवन में अपनों के लिए कभी, जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत होना। जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत होना, क्योंकि अपनों के बिना जीवन में सपना का कोई मूल्य नहीं है। और एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना ज़रूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है वो ही खास है। वही खास सिर्फ नहीं, वो सबसे अच्छा है। प्रोग्राम सुनने के लिए आपको यहाँ से मैं दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। इस वक्त के लिए स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार।

अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में हमने सुने लुट पुट गया। खो देने की बात ख्याल आता है, ये हर्षित होता है कि खो देने के बाद ख्याल आता है कितना कीमती था वो वक्त, इंसान और रिश्ता।

सोनिया, कुछ तो मेरे खो गया, कौसर, जामुत और कुमार जी, आपको लेकर चलते हैं देखने के वास्ते और सुनने के वास्ते अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। और वो ये है, सुनाने को हम तो ये कहना चाहती हूँ कि इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज़, इंसान को इंसान से दूर करने वाले सबसे पहली चीज़ है ज़ुबान, और दूसरा है पैसा।

0: सनुन और आयुष्मान ये दोनों के आवाज में हम ये सुंदर सा गीत सुने हैं। चलते ही रहना चलती का नाम गाड़ी, चलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत।
1: तेरे जाने के बाद दूरियों का मौसम बेकरार करता है, मेरा दिल सिर्फ तुझसे प्यार करता है।

हसन राजकुमार राव अमजद नदीम के आवाज़ में यहाँ से हमने सुने। और वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अच्छे दिन का इंतज़ार में उम्र गुजर जाती है, अच्छे दिन के इंतज़ार में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गई वही अच्छे दिन थे।

0: सफर सुना दी आप
1: द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस
2: बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया
0: फिर और क्या चाहिए
2: अगर तो
0: जरा हटके जरा बच के

है तो फिर और क्या चाहिए। ये सुंदर सा बयान हमको सुना दे, जैसे हमने एक बार फिर कहा, खुद का साथ दो, खुद का साथ दो, तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई साथी नहीं।

उदित नारायण से हमने सुने कि एक दोस्त ढूंढता हूँ, दोस्ती के लिए दुनिया है हसीनों का मेला।

बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज़ आगे बढ़ते हैं, अब वो है हमारा आपका उम्र यानी कि लाइफ टाइम।

पहले इश्क मोहब्बत प्यार हमको सुनाए अल्ताफ राजा जी ने। सुने वालों, चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ के ज़माना, कितना सब्र होता था, कितना प्यार होता था कि हम इंतज़ार करते थे कि कब कोई चिट्ठी आए, कुछ कोई ख़बर ऐसे आए। और आजकल इतना सुविधा हो गई कि आज तो रिप्लेस ज़रा सा देर हो तो रिश्ते भी टूट जाता है।

कमाने वाले को पता होता है, कमाने वाले को पता होता है पैसा कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं।

बदल गए हैं। जो लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस तरह से व्यवहार करना बंद कर दिया कि जैसे वो चाहते थे। तो इस बार हम सुनते हैं देवेंद्र सिंह सियुना जी का।

वाकई में बड़ा सुहाना लगे तुम्हारा शहर का मौसम, वाकई में बहुत सुहाना लगे सुनने वालों। और यहाँ से हम आपको बता दें कि आपका और मेरी यहाँ से मिलन जो है तो अफसोस के साथ हमारा आपका मिलन यहीं तक है। हम यहाँ से आपसे रुखसत होंगी कल फिर मिलने के लिए। ये ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी दो पल की है, मज़े में जी लो। ज़िंदगी दो पल की है, मज़े में जी लो। वक्त वक्त की बात है यहाँ सब ऐ दोस्तों, इसलिए कल का छोड़ो और आज में जी लो। मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम। और हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ साथ देने और सुनने के लिए।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता जी दे हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी आदाब, सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

इस चूर से आपके तो जरूर पता चल चुका होगा, पता चल चुका होगा कि हम स्टूडियो में आ चुके हैं। एक ही दम हम चलते हैं अपनी समाचार की ओर। तो दोस्तों हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर, हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर कि सूरीनाम में क्या हुआ है, क्या होता है, वहां की सिचुएशन आपको बड़ी मीठी जुबान से कोशिश करेंगे बताने को। अब देखो भैया, दृक्सुआ के चिजुआ सनमुआ में एकदम उफलाई गए भाई, उफलाई गए नानी कानी, कितना कितना मिले भैया, ना एगो दुई गो बोले चस वाला भैया, सवन किलो के हिसाब से पूरी मिले है सूरीनाम में भैया, पूरी मिले है नाक भौजी लोन जो गलवाम लगावे है ना कुनुआ से जो सूंघल जा दोस्तों, और ये वही पूरिया है जो निया से हुआ जाए भैया समकाल होवे है। तो ऐसे भैया कैसे स्ट्रांड के सिपाही एगो अख्तन फेफ तक यारख आरे स्टंट इज ऑन फ्लग भाई भगल है। हाँ सेलन हर्ष कैसे स्ट्रांड से एगो अख्तन फेफ तक यार के आरे स्टंट भाग्य भैया, और ही है के ये अदमिया भैया अख्तन फेफ तक यार के एकर पैदाइश भैले कोलंबिया में, एके बोले कोलंबिया कोलंबिया जॉर्ज एलिजेर आरिसा ओर्टेगा। हाँ इतना लंबा नाम है मौसी, तो एके बोले ई रहा एगो बड़का क्रिमिनल और खानी साक्षी के में रहा जो न तरी मनी बॉल चस वाला भैया खरूच खालक दृक्ष हंदल्ला, और एकर पास वापन फिर वापन रहा भाई, और एक के समन बन कर ले रहा निकर के भाग्य कैसे स्त्रात। अब सोचो भाग्य है नानी कि कोनो भगाई से ये बतिया हो सके तो वन दृक्षों वाला अरमियन के पैसा भैया हिया से हुआ रहे हैं, और तू जाने हमारे सिपाही के नाम सूरीनाम में बड़ी ऊंचा है नानी, इतना ऊंचा है कि का बोली भाई बहुत ऊंचा है, और खूब पकड़ाए पकड़ाए बन हुए तो विश्वास तू कैसे करियो कि कैसे स्त्रात के सिपाही एक भगाई से कि अपने से भगल है बड़का और खानिस्तान सिकी कोलंबिया रहा, और इन करके कैसे स्त्रात से भग्य है बोले कोलंबियान, बोले जो जेके फिनिश वे लांसन नेशनली टाइट रहा, और बोले बड़का दिल नाम राफान क्रिमिनली टाइट के और खानिसासी, और बोले है एकर पास सवन के मिलल रहा कोकाइन मिलल रहा भैया असीसी पेल मिलल रहा मीटा फिटा मीना मिलल रहा, और मरवाना हाज सब एक लगे पाए रहा, ऊपर से बंदूक पिस्तौल सब पाए रहा एक लगे। सोचो तो ऐसा आदमी के सिपाही बन करी चौके चाहे भगे के बाकी भगे के भगा दे इसे कई शस्त्रात के सिपाही नानी, बोले दे साख वारे ने फरतरख्त बत्रो के नहीं इस ऑन द सूक बेजी स्टील अन अन फिर वापस वेत में, तो बोले है कोलंबियान ओम स्टीक हमार अंदर है ए द सेलन हाउस इज ऑन स्नप मेंस, तू जाने भाई सिपाही सर नाम के विश्वास करे लाइक ना है नैनी रघुनंदन मोहबीर फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम में आकर जुट गए, आपको हम स्वागत करते हैं नैली जी। तो सिपाही लोग के नाम बड़ा ऊंचा हमार सरनाम देश में भैया, और हमारा मथुरा का बोना मथुरा मनोरथ का बोले कौन मनोरथ है, अरे हरीश मनोरथ भैया मिनिस्टर फान यूसीसीएन पॉलिसी के बात करी हम, ते मनोरथ बोले तू खांग फॉर फ्रिंग दलिंग नीत इन फौदख
taal van gebieden in binnenland nog niet in beeld. Want Chinoake jijke Brunswijk apres ego grip Chinoake pakrise. John Chinoa barka barka banduk leke. Op binnenland met ze bewak karatra apen sona ke. Brunswijk gele sapke. Aur skoutu surjati sapke pakarke. Aur laike bankarise. Te ekan mare me Hanis Manoraj bole UCC. Bole de toegang van vreemdelingen tot Suriname in de huidige situatie relatief willen eenvoudigen, willen bijdragen aan de situatie die zich dinsdag in het binnenland had voorgegaan, willen dat een Chinoake, willen je zwaar bewapend gaan, willen ze pakkerke willen liggen, lekker abbe tak John Kwe Kwamilala, chori bhele skoutu ke moem se bhaiya, skoutu ke moem me, skoutu me moem me bhaiya okar parasi me badka container raha, aur oma kwek bharala bhai sab kwek chori hoi ge koi jaan na paaye se kis koutu ke muh mase cheez kaise chori hoi ge to okar bare mein manorat na bole bole andar sukh hoy bhaiya andar sukh hoite rahega bole hoe komt het dat er zoveel vreemdelingen zo snel vergunning krijgen als we het hele proces bekijken betekent het dat ergens corruptie plaatsvindt ik hoor in de wandelgangen dat mensen voor $2000 gewoon een vergunning kunnen krijgen in die en is al jaren gedaan dat doe je jaar euro je toeke hè dat toeke zijn naam ke vergunning mil ja met le verblijf ke bhaiya ja betawe dat hamar des me Suriname me ka corruptie hè Baram Malijwasi hame soms hase ke pare bhaiya kaun bikau na hai bahut kamti bhaiya 2000 euro je tu dhariye to jai ke farkhine kin liyo aur chinwa dhar ke banduk bhi pa ja aur jai ke benalant mein sab failak kare hai tekar bare mein bhaiya malai raimon sapun ka bole hai yo hi sapun hai bhaiya jo unka bole hai ga nikar ke pl mein se jai ke ndp mein ghus ke aur aaj phir baithal hai ga काबल दीना में अब ये रायमन सपून का बोले सोरा चिनुआ जो सारा क्रेक कबीट में बोले पकड़ान है बोले सिम टोन बस्ट्राइडिंग के बोले मैं दत रखेरिंग साम में डे पार्लियामेंट मुझ सितन ओम द गफासिजेर नेशनल प्लान फन आनपक आउट स्ट्रिपलन तो भैया फिर यहाँ पे के पार्लियामेंटारिया सीधे सैमसंग बोले है बोले मेजर बद्रेफन इन एट बेलालाम सेंड द एकन फेलिकाइट डिस्टन हेवन एंड दैरफॉर ook wapens te beschikken hebben gezien de afdelingen बोले चिनुआ के खाली ना बोले औरो ढेर है बेनलांत में जो सबन एक बफेल के हुआ धरे हैं और दत सुनुआ जे खोदे भैया वो बहुत जबर रूफ हुए हैं ऐसे बतिया है तो बोले एक के खाली चिनुए थोरो बोले औरो है बोले जो हुआ बफेल करे थे एक कर बारे में शंगरुई वंग का बोले हैगा फ्राक्सी खनोद बोले है बोले चिनुआ बवाकस एन आनखोदन अफफूर्त हेड बदरे onbewaakt is achtergelaten bolle John bedrijf voor op zo'n wat kodet raam bolle apu bewaakt raad ook het abhies hebben roofkele hierdoor zijn ook spullen van die bedrijf ook derden weggenomen hij vraagt zich af wie de ondernemer hiervoor zal vergoeden dat je nou een keer beveiligingen kunt u pakken leggen lebaante en je kunt bedrijf voor hij gaat op uw onbewaakt hoe abba op hoe ze chichori hoe ik zurek hoe ik de ablantie ze poeche ki u aramien u bedrijf voor ke ab jaiga dek kere de khaila to baato ki utra chino ak pakad ke leega ilo baato jone ko bedrijf bewaak karat raha ma ab pakad ke leega lebaante ta tu apan admi hua dharu sab ke bewaak kare ki to wan jato ke koi na tu sab ka kare dit in tien talen jaar niet op het dergelijke manier gebeurt met ondersteuning van DNA zullen in de komende tijd wetgevende producten worden ingediend, zodat wij kunnen nagaan wat wij als land willen. Volgens minister kunnen buitenlanders nu als toerist het land binnenkomen, orbole hega waarna de militaire politie slechts één zoomier onderzoek verricht voordat de toegang wordt verleend. De IC, want ja, hij ja, toen hij hamar Hanis Manoraj John heen, bole 2000 bhario, dan bole corruptie het raar he, ki jai ke tu, bole go vergunning tu paaje. Yo IC, want ja, hij hamar je nani loon.
और हमारे प्रोग्राम में आ गया है हर हफ्ता की तरह धर्मेंद्र श्री, आपको स्वागत करते हैं। राज रामलगन भी आ गया है, आप सबको हम प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। अब देखो सुर जाती भैया तो लोन जानो है, सुर जाती लोन देश के खात लड़े है, देश बचावे खात लड़े है। देखो ईरान में का हुए, अमेरिका में का हुए है, फेनी रूसलैंड में का हुए है, और उक्रेन में का हुए है, सब सुर जाती लड़ाई वाला है भैया। आ हमार सा नाम के सुर जाती पिस्तौल लेके अपर गुड़वे में ताक ले हुए है राज। हमार सुरजतियन के ना हसीला भैया मंडे किया बतावे मिली तेरे नहीं खनन तवेन तक यार के इन बेन खसकोतन ना ऋषि मेतन मान दी बकें साथ आ सोम्बी कोनो सोम्बी से भैया गैला लड़े ते सुर जाती जो देश के रक्षा करे वाला भैया सुर जाती गल दाग दी जर एक्तर बोफर बेन में हीर वेर दो ओम स्टैंडर्ड बोले लेगे अकादमी सिकन हाइस में मिली तेरे ते है फरविकल इन वर्ड वेस्टिंग मेट एंड मान दी बकेन स्टार्ट आ ज़ोंबी से सुजाती लड़त रहा मुंह से और बोले तेज द हन खमीन सा ज़ोंबी अ रिवॉल्वर ओक वेल अ लोलो बाल खनोम हैवन खतरोकन एंड फिर तो फाइव स्कोट इन द रिक्टिंग है स्लॉफ्टोवर हैवन कस लॉस एन फन द कोफकल द सुर जाती इन द रेक्टर बीन ते लोलो वाला भाई नहीं लोलो वाला पिस्तौल कैसे हुए जैसे फिल्म में डकावे जाने मुरिया देखे खड़खड़ खड़खड़ ड्राई करे अमिताभ बच्चन वाला राका यार जो खड़खड़ खड़खड़ ड्राई करे बोले गोली कहाँ है बोले गोली कहाँ है बोले गोली नहीं है तो बोले आप गोली खा। तो ये वही बोला वाला को है कि भैया तो ई का बोले सुर जाती के दाग दी से गुड़ में और का बोले और रमिया का नाम बा ज़ोंबी भैया ज़ोंबी लड़त रहा। तो ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा प्यारे प्यारे। अब देखो भाई एगो बाप का करिश मिंदर यारख सोन ओतो के कॉफर में भर के और भैया मर्चा लगा दे इसे हुआ पे जान ना चाहे लगावे के भैया खसला दे लोय में लगा दे इसे लंडवा के और लंडवा के बारा में सांदल करी से बपुआ यहाँ बतावे है अने अने हेव ते स्कर्प पेपर ओप।

Kakrisye escape na bala bala. Ajuma bai cha bole ajuma baya ajuma chmarcha. Oker khasla khafula gedelen van het lichaam van de minderjarige oke lagadi se bhai. O malundwa ke lagadi se ga. Socho bhaiya i me sandaling hai kina i banchit hue hai ga. I banchit hue hai ga mart me. तब मैवा काकरी से भैया मैवा काकरी से गैल है अब बोले मैवा भी बतरों कहेगा द फरदाक्त हर फिया द मूदर फान द मेंदर यारा का फरनोमन दैट सेंस सोन मोखलक बतरों का नवास कवेश बे ऑन खपास्ते सेक्सुअल खतराक दिस इलंडवा तेरा बरिस के भैया ऑन खपास्ते सेक्सुअल खतराक रहा और एक लगा दी से मर्चा बापुआ के बोले रहा मैवा और बोले तेनेस द रिट plaatsen de verdachte de minderjarige auto ke koffer me bharke lege he en bolle he omstanders dusdanig alarmeerden en bolle skoutu belke te skoutu bapwake pakarke lege he en OM kakker die ze bhaiya ouder de wettelijk en morele plicht heeft zijn kind te beschermen en bolle op te voeden en een veilig omgeving te bieden ongeacht de aanleiding voor hem vermeen en ruke bap maike te verplicht rauw ke kareng ma patana he ओकर असली बाप है भैया की नकली बाप है तू याने इसकी फादर भी होवे है तो बोले द ओल्डर्स फॉर द मिनरियारखे वार रेस uit elkaar volgende verklaring van de meerjarige liet de verdachte zich tegenover hem herhaaldelijk negatief uit over zijn moeder het OM stelde in dat een kind op deze wijze wordt betrokken bij de strijd tussen ouders en dat is schadelijke gevolgen dus je bapoa mewa इसब का बोले हैगा स्केड हो चुका लहा तो एकर बारे में अब एक के 12 महीना के ओएम जहल मांगी सेगा veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden voor vroegtijdig ze teilondwa अब का करे बाप माई ना है भैया संगे तो ई फरवालो सोगे सेक्सुअल हैंडल करत रहा अब अपो जाए के मर्चा नहीं लगा दी से तो अब मरबो करी सेगा तो 12 महीने बरिस अरे 12 महीना अब जाओ फ्रुईती करो भैया अब तोर साथ कहां मर्चा लगी कहां मर्चा ना लगी तू जानो है जहल में मर्चा लगावे कि और कुछ लगावे भाई सेक्सुअल मिसब्रेक के बारे में तो हमारा प्रोग्राम में चित्रा उतार भिया गया है स्वागत करते साथ साथ शारात सारदेशा आ गया है मीला जी हाँ अब समझ गए हैं तो थैंक यू वेल थैंक यू वेल थैंक यू वेल फॉर सो फेयर हार्चेस अब हम जाई है देखो हम जाई है फिर यहाँ पे सरमक्का के और महेंद्र जोगी लगे भैया जोगी जोगी के निकार के जोगी जोगी के अधीन फोर्स इतर रहा ओके निकार के बोले बहरे तू भाग जा ओम जाए जोगी बोले रहा अधीन के बोले इतना सेलेक्ट फोर्स इतर दे रहा हम लोग के कहीं ना मिले बोले तू सेलेक्ट तब आटे बस अधीन उधियाई का दुनिया बोले अब से उधर भीतर बोले तू सालों में से निकल बोले तू क्लोइतर बाटे तो जोगी जाए के बोले बोले क्लोइतर बाटे तो क्लोइतर लाइस्टर बाटे भैया का होवे दे ना में लड़े है जैसे कोई कुत्ता बिलार भैया झौंझियाए तो यहां अब जोगी रफीन से गईल है तो अब वो बोले है जोगी बोले हम मांगे लान जोन तुलन इतना ढेर बैठा लान से रईस बनावे है जब देखो तो सिमोन चल जा है तो गगरी रस लान चल जा देव देखो तो बैठा लान में रहे है तो अब बोले हम मांगे ला जाने कि बैठा लान से रईसन दी मिनिस्टर इन अफखलो पर रखेस यार hebben gemaakt. Daarin moet volgens hem staan welke ministers zijn afgereisd, waar ze naartoe gingen, wat het doel en rendement van de reizen was en hoeveel geld daarmee gemoeid was. तो जोगी बोले असेंबली में बोले हम अंगले सब जाने कि तो लोग गईले है कौन ची कल्ले कौन ची नकल बाज भैया परमेश्वर का बोले है अंडरस्टैंड ट्रांसपेरेंसी ओवर दिस रीजन मार बोले है परमेश्वर बोले हाँ बोले हम भी मांगेला जाने तो एनडीपी के पार्लियामेंटेरियर रवीन परमेश्वर बोले है रिराक्सी में दार ऑफ दैट इट फॉरसुक ऑफ ओपन है रिएक्शन फॉरदीन है से फॉरहुक्त सेन दैट ओपोसी nu eveneens het belang inziet van een transparante werkwijze.
Al dus permisser, boleh hambi lo mangel jane, boleh ap kaise boleh akhiya khule oposisi ke, aise boli se hamari janta hamana boli lainya jon likhal hai, u to batawe ke to hamara kaam hai, naya ro hum chalte hai. हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर हमारी जनता हमारी प्यारी प्यारी जनता सुरिनाम में बड़ी आ रही देख हुए भैया बड़ी ब्रो फिक्सर मरे देखो यहाँ का भैले जब देखो इतना आ रही देख हुए है फरकेर में अबे को ब्रो फिक्सर भैया जात्रा मखेंता कनाल वेख में मखेंता कनाल वेख में को ब्रो फिक्सर जात्रा भैया और रोके मारिस ओतो मारिस ये रमिया का भैया जहाँ वो मास्टर के फुटबॉल फैलतुआ है हुआ तो हरदम रुकीला भाई तब वो मास्टर के फुटबॉल फैलतुआ लगे हुए पे मारी से ओतो 10 बजे एंड थिंग फॉर 11 सिपाही पाई से ब्रेक के को ब्रोंफिस के मारी से दिस दानक अरेस्ट खवोन दत है तेर प्लाट से ओवरलेड कि मर गए भैया द बस्टूर्ड फन अ पर्सन इज ऑटो रेड ना आरेडिंग डोर सोंदर से ओम है स्लाक्टोफर ते बकोमरन और ओतो हुआ मार के भैया भग गए ई बहुत दुख के बात है होई से कैसा है जब जा स्लाक्टोफर हुआ लगे लेके दतरा अतरा जाते साइड ऊ बच जा बाकी ऊ पेल भागले भैया द बस्टूर्ड इज ओवर खबरा फॉर फर्दर ऑन zoek en de verklaring dat aan kan je pardon really bestuur wakker hebben we iets weer naar haar maar op bij hem ook erbaan met al fini fini aan blokken hem wat abe to beta snee bij aan gaya hai beta ji aapko hum swagat karte hai sath sath aan gaya hai geeta bhi aan gaya hai to geeta ji aapko bhi hum bahut pyar se apna program mein swagat karte hai अब तुलन जाने हैं विलम हॉलीडर के बारे में नीदरलैंड की न्यूज है और ओके सेवन पकड़े रह जाए कि दुबई में भैया बहुत आदमी के मरवाई से चलो जाने पीटर दफरिस के मरवाई से एके सेवन दुबई में जाए में पकड़ के नीदरलैंड आयल है और एक स्ट्राफ सेक में एडवोकेट एक खात ना मांगे लड़े एडवोकेट ना मांगे लड़े वन एडवोकेट के भी पकड़ के सिपाही बन कर ले रहा वन ये रमिया इतना ढेर पैसा है वेलम हो ले इधर के कि सब कुछ मांगे कीने तो हो ले इधर वोट ना एलफ यार 11 बरिस बन रहा अब उगे लेगो एक्स्ट्रा बफेलर द ए रिक्टिंग में और होएगा फक्त में फक में जेने लैंड में हैगा बहुत लोग के पता है फक में को बहुत बड़का खफंगने से जैसे सांतो बोमा भैया बाकी ई और जबर चीज है फक में यहां के बफेलिंग बहुत स्वार है तो सबसे स्वार द्र अने बफेलिंग अने का बोले हैगा खफंगने से ले जाए के धरी से और बोले हैगा स्टा सेक्रेटरी क्लोडिया फन ब्रुखन जिस सी एन फेलेगेट के बोसलेस करी से कि सेख होले इधर एडवोकेट सुख के पेशगिरु में बताई से कि 68 यारख होलीडर अब ओके मिलल हैगा लीफंस लंग सेल उ कभी ना निकलेगा यहां बताई गई से नानी बोले जिंदगी भर अब तू ना निकलिए बोले हैगा फोर्स एंड ब्रोकन है सीरी मोर्दन में मर्दान 11 11 यार साथ बे है इन एक्स्ट्रा बफेल द इरेक्टिंग एबी में इन फिर द स्ट्रेंथ बफेलगे गेवंगनिस फ्रॉम नीदरलैंड और बताया गया दोस्तों इस महीना में राज फॉर स्टाथरेक्स टू फासिंग यूथ बस्केरमिंग स्टार सेक्रेटरी ऑफ ब्रुखन नौ बसलाइज के रिच के होल लीडर खफानिस रखीम में जाएगा आर्नो रित हाथ होल लीडर फरब्लेव इन एबी ओंडांग्स द अपी पाई सेगा लीफंस यानी कि लीफंस लंग के जहल पाई से दोस्तों और हम बताएंगे विलम होलीडर के बारे में हमारे जनता और आगे हम अपना प्रोग्राम के लेकर चलते भैया चलो जानो फेनिसवेला में आज बेफिंग चबड़ा आए ले बहुत आदमी मरल है फेनिसवेला में सुरिनाम लेकर ना पहुंचे भैया वहां सुरिनाम तो फेनिसवेला से दूर ना है लेकिन अब मेक्सिको में भैया के सवारा आज बेफिंग फॉर द साउथ वेस्ट कोस्ट में मेक्सिको में और मोखलक हैगा कि एगो सुनामी आ सके हैगा मेक्सिको में देश एक हो में हार्ड फास कि सुरिनाम में न चल जाए भैया वन दिस सोर्ट
aardbevingen gaat door, mensen. Die gaat gewoon door. Oh, hier hebben we wat eigen. Zuidwestkust Mexico mee. Zware aardbevingen. Eilet Jaha. Kabule aardbekracht 7.4 is heel groot, mensen. Amerikaanse geologische dienstbataille is ik erbaren mee. Bolle een 10 kilometer diepte. Porto Madeira mee. Vlak bij de grens van Guatemala. Grenswippen Mexico. Bolle gaan. Waarschuwing is gegaan. Dat mogelijk een tsunami aan de wala. Hey, dosto. Maar laten wij goed volgen. Kietje joa oisje he. Ki abbe doro na awe bhaiya. Want we weten allemaal de grote tsunami die we hebben gehad namelijk. Die is voorbij. Maar hoeveel schade had hij gedaan? Ik hoop het niet dat er zoiets gebeurt. Maar in Venezuela hebben wij namelijk de aardbeving gehad. Waar honderden mensen overleden zijn. Daklozen zijn. Hamlo janela Venezuela me. Kabaile toch? Toen je baantjeet hoor, haan he, hamare, piare, piare, meetha, meetha, janta, ab dekho chakallas bhaiya, abbe Amerika, Iran ke turiya, hum bataav ka bhaile, pahile hum jai, salantawa me ghusi, ukrainua me ghusi, Zelensky bhaiya, ab dekha karise, Zelensky ka kare bhaiya, रुसलान के बोट जितना समुंदर में है सब के ड्रोन से दागे है इतो जैसे स्ट्रात हॉर्मुज के चियुआ तुलुन जाने ईरान है और अमेरिका हुआ पे लड़े है हॉर्मुज के जहां से तेलवा के बोटियन पास हुए है अब ई काकरी से सेलेंस्की अब रुसलान के पहले सब राफी नादर रहेवन बहुत ढेर दागी से अब रुसलान के बोटियन दागे के शुरू करी से रुसलान के पुतेन सोचे अब का होई कहां शुरू करी और कहां एंड करी जाने चाहिए कैसे तो यूक्रेन से प्रेसिडेंट जो नहींगा वो है सेलेंस्की अब वो का करी से भैया अपन आन खवीचा सेक्रेटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी के डिफेंसी के बोली से यहां पे भैया कि वो सब डिफेंसी के आउट मिनिस्टर क्लिमेंको आन फॉर सिक्योरिटी रात के धरी से को पुराना मिनिस्टर रहा डिफेंसी मिनिस्टर जो रहा leidde tot protesten in onder met Kiev. Even klonk dat Zelensky wilde aanwijzen voor ambtenaar. Toen abbe ik erba. Bare met trokken oor fini fini hem het abbe. Ki ka bhail hai. Au ka na bhail hai bhaiya. लेकिन लड़ैया जोन है बहुत जबर हुए भाई बहुत जबर हुए है उधर ईरान अमेरिका शुरू करी से दागे के मेरी तेरे दूले बहुत ढेर के दागी से एगो बुड़की भी दाग दी से जहां बुड़की पछे सामान जात रहा ईरान के ओके दाग के तोड़ दी से और इधर ईरान का करे हैगा मेरे उस्तन में जहां जहां पे अमेरिकन से बासस हैगा जैसे हैगा का बोले हैगा यॉर्डानिए में वो सब के खूब दागे है दोस्त ये लड़ैया कब दोन हुई भाई बहुत आफत है और तेल हुआ लड़े भैया और हम लोग तेल हियां महंगा में चलो और हम लोग का बोले है किनो नीदरलैंड में तेल हुई है अने अने अने अने अनलोडेड 2,30 euro हुई है दोस्तों पर लीटर हैगा 2,30 euro हैगा प्लस मिनस कहीं पे एक चीज ज्यादा है और एक चीज कमती है बड़का दाम पे और महंगा हुई ये है बेना में और सस्ता है तो सस्ता का 2,30 euro है भैया और एक हफ्तो हम भले रहली तम भले रही 2,24 euro पे लीटर और ये हफ्ता हम हुई है ये अब तम 2,30 euro हो गएगा तो दोस्तों हम और जाए भैया एसएलएम की ओर हां तो एसएलएम में हमारा टोनी इसरी भी आई है टोनी जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं अलमेरा शहर से आकर हमारे प्रोग्राम में जुट गया है अब देख का भले एसएलएम वहां के तुरिया
SLM heeft een persbericht verduidelijkt. Kibole Hega Luchtvaartmaatschappij. Geen officiële audit pijzen van een internationale civiel toegane. Ze hebben een vliegtuig gewoon keurkeren. He, SLM ze hebben een keurkeren. Ze gaan hoe veilig het buitenland met uwe kina. Ze hebben een bericht pijzen dat die veilig is. Maar hier op de applicatie liggen. Bullen officieel audit snabij liggen. Van de internationale bullen organisatie heeft ondergaan. Het ging om een vrijwillige veiligheid uitgevoerd door de Duitse bedrijven. Ook vrijwillige Duitse bedrijven. Ook daar heb ik een officieel naam. De correctie volgt nadat eerder berichtgeving volgens de maatschappij mogelijk de indruk heeft gewekt dat SLM rechtstreeks was doorgeleerd. SLM benadrukt dat dit niet het geval is en zegt onduidelijk te betreuren. De Isabolera Agiki SLM ke mag in buitenland met bolle goedkeuring en veiligheid. Maar blijkbaar dat de Duitse maatschappij vrijwillig keurkelera al SLM ke admin hoop en bijna pagraka dagelagala, bombel dagelagala, gabakate lagala, gana gawe lagala. Ki hamelon pel de libati, ouro na jamu is on. De zoek kreeg, dan op later heb je jou op heil hega, dan bole hega, bole hega, bole eisen na he, bole dit, oh dit werd uitgevoerd, bole een geaccrediteerde een auditieorganisatie binnen het internationale programma. Hoewel de normen waaruit de controle was gebaseerd afkomt te zijn van ICAO, betekent dit volgens de maatschappij niet de strake zijn van officiële audit. De onderscheid acht SL belangrijk voor correctie en transparantie informatie. Nee, het mingana gawe he, a kufariari he yena he, a kabakatai legale manani, aise batia to, to reshma nibar samdiniya bhi a gaya he, aapko hum bhi swagat karte he, apna nieuwsberichten ke apna pyara pyara program me, to reshma nibar bhi a gaya he. और आगे हम अपना प्रोग्राम भैया सुरिनाम के स्कौतों के भैया हम लोग टिंग पेन दे सकेला भाला रे समा स्कौतों ने इतना जबर बदमाशी करे भैया देखो कैसे स्ट्राचुटो बड़का क्रिमिनल भगे छह गो सात गो को कहीं न पकड़ा रहा तो अब देख एगो स्कौतू फिर पकड़ाएंगे भाई सेरखियो भैया सेरगियो पकड़ान है पोलिसी मान सेरगियो भैया ब्रासिलिया में चल गए रहा ब्रासिलिया आए लोग के संदर ये पे पकड़ ले से भैया एको 40 बरिस के सिपाही से नाम के सेरगियो से ऊ चल गए रहा ब्राजीलिया जैसे लौटल हैगा ओके संदर ये पे पकड़ ले से पो ने प्रोक्यूर जनरल जो ने हॉफ जी सी के donderdag gemeld, Chris Egan.

Suriname is teruggekeerd op instructie van zijn advocaat. Vera meldde hij zich vervolgens bij de militaire politie. Vanwege geconstateerde onregelheden zal de advocaat Apikerwarim Kahuito Irmaji Apkobi hem behoed piaarse. Op een programma zwagert karte he. Je wo hier is ma Irma. Irma ramte hel zing. To Irmaji. अब देख भैया निकेरी में का भैले गो पियकड़ नशेड़ी में का करी से तोनिया देख नशेड़ी का करी से बोलिए जोनी ढकोले हो या ढकोले महाराज है इ दारू पी पी भैया और जब बीर कोई डाम पे जात रहा तो ओके गरियावत रहा लड़त रहा झगड़ा करत रहा उपियकड़वन के तो हम भी जानी रे कोई जमाना में हम सरनाम में छोटा रही तो दुई गो तीन गो हमार राबिरवन नाम नाले भैया जो डाम पे पास हुए जे ही देखे वही के नानी माई उल्टत रहा गाड़ी देवत रहा आदमी डर के मारे कुछ ना बोलत रहा ओके एरमा सोचे का जाए न सेड़ी के मुंह लगे का जाए न सेड़ी मुंह टेररिजेर करत रहा पर सोलत कैनिक मेंस इन मेन भीड़ En ऐसे निकेरी भी एगो 58 तक यार के निकेरियां ने भैया दारू पी के बीरा लोग के भैया गाड़ी देवत रहा सब कुछ कर ऐसे में एक रोज इतना ढकोली से कि 7 बजे रात के ई बात हुए पीसांग का पकवे ते पीसान भैया ना बारा बनावे वाला पीसान रस्तवा के नाम बा ने रस्तवा के नाम बा पीसांग का पक वेख में ते एगो औरत के भैया फिरन देर तक यार के औरत के का बोले हैगा और ओकर दुई गो बेटुआ एगो 14 एगो 15 और ओकर बेटुआ के गो संगतिया 19 बरिस के के सब के ई अदमिया पे कड़वा एम हा एर अनफाल करी से भैया औरत के तीन को लड़कन के 14 बरिस के लड़कुआ के काटी से भैया काटी से ओकर हाथ में गहरा घाव होई गे है राज गहरा घाव होई गे है 14 बरिस के लड़कुआ के काटी से और ओकर माई के भैया ओकर माई के भी काटी से कितना देही में कपुआई से ओकर देही में और बतावे हैगा ओफर फॉर वार्निंग बाय द अंदर अनवेज केस निच कमेल्ड और बोले द पुलिस स्टार फरदाख्त बकेन आल्स अल्कोहल फरस्लाव एन सो बुर्डबोनर फाकर हैव uitgeschelden और बोले एक बार में सिपाही पैराडाइज के रमिया के पकड़ के ले गए हैं कोर्ट तेज लातर और ओकर घर से और बोलेगा जो चे काटेरा ओ पाई सेगा बस लाखली से अब ई जाएगा जहल में भैया नतीलक अब एक जहलिया में दरुया कैसे पाएगा कैसे पाई नानी तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता हम सोची तो लुके को गनवा सुना दे अबे हम तुरंत आ जाएंगे विनीता गौरा पूजा भैया कोनो गाना चटनी है

और मोरे जगपुर मनिता विधी और ये था एक चटनी जो जो आपके हम सुनाई दिया है। तो हम चलते हैं और आगे तो हमारा दिल बुद्धू भी आ गया है, आपके स्वागत करते साथ साथ रानी समुझ भी आ गया है। तो रानी समुझ हमारा बहन होगा लेकिन बहुत सा ज्यादा समुझ है, तो आपको भी हम स्वागत करता है रानी समुझ जी। साथ साथ दिल बुद्धू भी आ गया है, हमारा प्रोग्राम में सब पे जुड़ गया है। तो अब हम जाई भैया ई हम जाई है, जोन अनमी बरा जबर चूसे है कुको ही नानी। हाँ जानो हमारे काम है जैसे ही सुनुआ कुकुया के बन हो जाए तो हम अब तैर बताएला कि कुकुई नहीं दलना तो ना लियो हुआ कटिया में ना पकड़ियो बन है बकी सही सुनुआ खुल गए है सही सुनुआ खुल गए भैया। हाँ अब कुकही तुलोन का बोले पकड़ सके है। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल ले कुकुया बंद रहा। हाँ अब कुकुही खुल गए है, अब जे जे सरनाम में है तुलोन जाई के चोपू कर सके कुकुही। मसाला में बनाइयो खूब भिंडी डाल के, हम तो ना खाइए लेकिन जे खाए भैया बड़ी स्वागत से खा है। अब सबको हम बोले ला भैये से एस माकले कुकुही अब हो गए है खुल गए है। और बोले हैगा सही सुनो वहां खुल गए है जिस आप लोग अब सगरो जाकर पकड़ सके है बेच सके हैं तेज इन दखल लोटन से इसून फरबोर्डन हम देश और अंडा जोन है भी बंद रहा दरनाथ इसे ओक फरबोर्डन ओम त आलन तेरे एयरन कैट ऑफ एयरन नेस्टेड फर्दीलन। तो हम बोली कुकुहिया के बारे में बोले वन कितने आदमी भैया जोन सुरीनाम में बाल उस सब के लावे मांगे हैं लेकिन उस सब के नालाई सके भैया। हाँ भाई जैसे बोली ला इकोरता टाइट पे फेव तक यंगर सुरीनाम में अरेनिंग से मरल है भाई, दैट इज हील फेल है बुद्धू। फॉर केस दौरन ता लोब स्नेल ऑफ आल फेव तक स्लाफ ऑफर्स दी या ए देत यार मेरन देल यंगरन से इन ऑफर ले भाई। यहां बतावे हैगा बोले तू ही दैसन फेवन ट्विन तक भर में एनन से तक गो आदमी मरल ला फॉर केस से। बोले अतरवेल अबे हम लोग यूलिम बाटी और 50 गो भैये मर गए भैया, अबे हम लोग के दैसा मलक परल है का होईगा भला। हरीश मरोजे जिस ने पुलिस को बोले मेरन देल फॉर स्लाफ ऑफर्स एंड अलमाल यंगरन में से अपन बेटवन के बिटियन के खुद अपरेल उन जतुलों जयो तो आप लोन का बोले अपन लड़कन के खुमोई से देखियो। यहां पर रानी बोले फौचे फान क्वी क्वी ओ या मैं यहां तो लिखा ले कुकुही इस ओपा तब हम अब का बोली जो ने लिखा ले वही हम बोलत है क्विक क्विक सुन इस ओपन सही सुन फॉर क्विक क्विक वेर का ओपन स्टार्ट हीर। मैं खुद मैं से एक आई फिर दूर में मैं न्यूज़ तो लोन जानो है एगो एगो कहाँ बोले है केरकी के आदमी है। अरे भैया पास्टोर है हम ना बोले ला मिसी कब्बा के हाँ हम बोले ला एगो मैया के भैया मैया के बोली ला तेगो पास्टोर रहा ते एके मांगे बनावे इसराइल के अंबासादा मांगे बनावे सब भैया ते एकर बारे में आदमी लोग बड़ा बसवार करी से बड़ा बसवार करी से मिनिस्टर मेल्फिन बोफा बैठने साकन के कहा बोले हैगा बोले लेख नीड वाकर फॉर अ क्रेडिट ऑफ द मोनुमेंट फॉर द बिशप स्टीव मेयर अस नीट रेसिडेंट एंबेसडर फॉर सुरीनाम फॉर द स्टेट इजराइल फॉलोस द बेवेस वांट इन द ओवरकस क्रिटिक ऑफ मेयर फेला पर्सनलिक रेग एंड नीट साकलिक ऑफ सेन वर्क। तो एकर बारे में अरवी लोन बहुत बहुत क्रिटिक ले फर कलर रहा मैं एकर बारे में एनपीएस के फ्रक्सी फोर्स ले फ्रक्सी ले दे रहा जेब जेरल पावीरे जो फोन द बसलेटन फॉर द हैंडलिंग फॉर इजराइल टेकन ओवर द पैलेस्टाइनियन फुलकोमन इज ट्राई से मेड ए नॉर्मल फॉर वार्डन तुलन जानो है और मलाई लोन मुस्लिम हुए भैया और तुलन जानो है इजराइल जो रहा अब है अबे पैलेस्टाइनियन के संगे का करी से
तो हमारा सूर्य नाम के जो मुस्लिम से गा मतलब की दे नाम है तो इस अपना मांगे है का कि इसराइल में जाए के और एगो अम्बासार बैठे एन दारम है बस दे इसे क्रिटिक में से एन मोख यूरी जीगर वेत हु एन वात तीज तो हम चलते हैं और आगे भैया हिया बरों तो तू जाने बारा मोये मोये वर्द है तो पूनम अवतार भी लाइनिंग से आ गया है पूनम जी बेटी आपको भी हम स्वागत करते हैं साथ साथ सुनील सुनील दत्त गजरी गजरी जी आपको हम प्यार से महा स्वागत करते हैं तो तुलन जानो सोमो हार्जो पॉल सोमो हार्जे का बेटा हुआ बरों तो हाँ इतना लंबा लंबा कहानी बतिया भैया किलो मीटर के फेया पे के फन आ तो सेट गरियाए के धर दे से और एक के टॉक्स ताज मुश्किल लुकिंग मिलल है लेकिन लेके कोई पकड़ के बनवे ना करे है हां तो अब एकर बारे में भइल है कि आउट मिनिस्टर फॉर बिल अलायंस आखिर के बिस्सा के और एक्स मिनिस्टर क्लीम और हुफ ग्रांट के फिनेंशियन के रियाद नूर मोहम्मद ओवे के स्टार फंड मुश्किल लुकिंग सब कर ले रहा फोर स्ट्राफ बार फैटन और यह बताए गए है ब्रोंटो सुमहार्ज अल फरदाख्त फॉर होर दूर ओएम अब ओके सबन फॉर होर करी से ब्रोंटो के म कैसे भइल कैसे ना भइल है और नया न्यूज़ से भैया ईरान मेल्ट देर तक दो दिन ना अमेरिकान से अनफालन छोक साथ रो छोई के लड़िया भैया और देर तक आदमी मरल है ईरान के अमेरिकान से अनफालन जोन भैले ईरान में बोले हैगा रातन मेरन त्वी होंद सस्त खवंदन एकर बारे ईरान के वोर फुर्दर बोले है अनफालन ओवर एंड वेयर द अफगलोपन दागन बहुत अनफाल के इस अमेरिका ईरान के ऊपर और बोले ईरान भी दागी सेगा लुक्स अनफाल के से कुवैत में और बहराम में जहां पे अमेरिकान के बस अमेरिकान से वहां पे उसे अपने बासस भी हैगा फोकस ईरान से अने खारदा बोले अमेरिकान से वापन ऑप्शनल प्लाचन के दागी से जमन द फेयर स्मेल अनफाल ते हमर एट को फूड की दसन को मिलिटेर दुलन इन द ब्यूट फ्रॉम द स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्मुज एंड इन द गबीडे फ्रॉम ईरान से कुस दारबे वान फोकस अमेरिकान से लेकर अंदर में raketten installatie drones en marineschepen het doel van mensen ik volg de oorlog namelijk niet alleen van Amerika en Amerika en Oekraïne en Rusland maar toch wel heel veel mensen to je ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा तो दोस्तों हम और आगे चलते हैं

Ja, de Hampin was AGE. Dus mensen, ja, hebben wat AGE. मास्कर सुरिनाम में भैया मास्कर जाने का बोलो तो ना जोर हमार मौसीलोन में के पुआ लगावे मास्कर वो के ना बोले ला चोरवन और मास्कर वाक बोले ला सुनील जोर मुड़िया में पहले कोई ना देख पावे ओ मास्कर वाक बतिया ला ना हमार भौजी जो लगाए लगाए चमकावे ओ मास्कर वाना है तब भैया ई ओ मास्कर वा है अब भैया जोन समझ जाए के ऊपर फाल करे है यहां बताए गए है करिया करिया मास्कर पहले स्वार वापस प्रीख उफरफाल खौज सुकर्स काम पर और दुकान में भैया वही मारे तो चिन वालों हुआ जाए जाए खौज सुकर्स जो ने अपन बफाई लिखिंग धरे हैं यहां पर बताए गए हैं कि 12,000 एसआर दे 15 ग्राम सोना मारी से जहां पे सोनवन खुदा है क्रिमिनलन खौज में एक शख्स भी तय टिकन फोर्स है तो से फ्रीस इन दैट क्रिमिनल कैन टर्न ओम दैट बर्ड फोकस हैं खरिंग वासमैन से तो ई रूफवा के चीजवा हम तो लोग के बड़ा ढेर बताई चुकली है हम सोची तो लोग के और मोई मोई न्यूज हम बताई भैया और मीठा मीठा न्यूज हम तो लोग के बताई क्या होता है देखो भैया हम जाए तेरी अफ्रीका के ओर हाँ बोलिए जॉनी अफ्रीका में का भरी सूदान के बातचीत हो रहा है बुद्धू सूदान में भैया तू जाने है का बड़ा बीमारी है हुआ हाँ तो कभी गोरेला तो की मोरेला की कौन ची ना मोरेला तमाकू ना गोरेला है भैया खोली रा बोलीला बीमारी है जेमा 114 आदमी मर गए है 1300 वो बस मेटिंग भइल है सूदान में खोरेला एगो बीमारी भैया बस बेटल का ड्रम इन्फेक्शन हैगा दी वर्ड फॉर ओट्स और बैक्टीरिया फिब्रियो कोलेरिया द सिक्ट फॉर स्प्रेड सिक फॉर ऑल फियर फॉर फेल वाटर एंड फूड सेल एंड कान सिक स्नेल अलबरेनर खबीदे फॉर अ स्कोन ड्रिंक वाटर एंड गुड सैनिटेर फोर्सिंग के बारे में तो इतना जबर बीमारी हुआ है दोस्तों दिस जनता लो के ने ने काबुले अफ्रीका में वहां पर भरी दुख है हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता हम जाई है भैया और आगे को अपना प्रोग्राम लेके काल प्लक वेत हां हम लोग के नीदरलैंड में काल प्लक वेत हैगा मतलब जब तू चौका बोले अपन पैसा अपन धन दौलत जोन बा नीत ऑफ द यस्ट मनीर है फरदीन तो के ये फियोत यहां पकड़ेगा ब्लास्टिंग दीन पकड़ेगा तो तोके एनम निकिया जाए तो बोले काल प्लक वेत मतलब कि जैसे मुर्गी के सब नोच लेवे पखनवन है ना राज तो के बोले काल प्लक वेत तो अरमियन के पास कुछ ना है तो बोले हैगा व्हाट खाइए प्लक फन काल के दूसरा चीज हो जाए मकाल प्लुक वेद जो नहीं गा तो के इन्नम निकिया ढाड़ी अब सबन मांगे भैया काल प्लुक वेद सुरिनाम में बनावे तब तो बिना कपड़ा के दया नोन जाए दया नाम में भाई बैठ सोचो तो काल प्लुक वेद मांगे दया नाम में सबन बनावे भैया फराख आंदा फॉर रेकबस्कर में इन एट फूरे कभी ना हो पाई भैया एगो इंग्रिड कार्ता बैंक हैगा फोर्थ सेटर फॉर कमिशन फॉर रिपोर्टर्स ई बोले बहांडलिंग मांगे करे बोले हैगा वेदर रेखलक फॉर क्रीकन फॉर फोर डील बीटर बकेंड अल द काल प्लुक वेद डोनरडक नेशनल असेंबली में सबन ब्रीदर स्टेन फॉर द फॉर द डूलस्टेलिंग फॉर द क्रिमिनल en hun illegale verkregen vermogen te ontnemen. Maar le John illegaal se kini se bhaiya 3 go 4 go helikopter. Tulun samaj gaye le to jeke jeke bhaiya dekhiyo aur un puiri se aur drug se aur us sab chijwan se sab banaye banaye dhari se na ab okay kalplik vetwa je ho jaye to sab ban jaye okay kal kare baki u vetwa jaye tak mot देख के काल करियो वन उमा तो कितना असेंबली ये में बैठल है तो सीमा विष्णु दत्त भी आ गया है तो सीमा जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं तो यहां बताए गए हैं बोले हैगा असेंबली बोले ब्रीदर्स ट्विन करी से फॉर क्रिमिनल इन लिखाल फकरी के फॉर मोहन तेदन से इस्टर रोंदन फॉर कमिटी फॉर रिपोर्टर्स
Onderschreven de woordvoerders het belang van de wet in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, corruptie en witwassen, maar vroegen zij tegelijkertijd om verduidelijking over onder meer de rechtbescherming, de bewijslast, de uitvoerende capaciteit en de aansluitende begaande wetgeving. To karta brink jun he imange kalpluk vetwa abitala we ekar bare me Krishna Motra fe ya pe ke bole hega ki bestrijding van de georganiseerde criminaliteit noodzakelijk is, maar dat de rechtsstaat daarmee steeds centraal moet blijven staan. Zij vroeg de een uiteen te zetten hoe de nieuwe wet zich voorhoudt. De ikker waarin toch een paar jaar bari jabar volg karab. Ki kaalpluk wet wat kabhitter ja he. Corruptie wet ke bari sana lagge bhaiya baki abbe corruptie karmiye na pakraan he. Hoef de laat kan niet kahan kahan baithal be itra corrupte lingen jon hiswa me he. Oke koi pakad ben karisega. Dus ik vraag me af, regering, gaat deze wet wel werken of niet? De corruptiewet is al in. Toch zijn er zoveel corruptie in het land. En gaat deze wet wel werken, de kaalplukwet, of niet, mensen? Ik heb het grote twijfels eraan. Ik heb een grote twijfels eraan, maar ik zal dat op de voet volgen, mensen. Ki is een koontje kere, koontje nakere, he. Dus die kaalplukwet is goed, maar gaan ze dat wel doen of niet? Dus daar gaat het om, mensen. Jantake de kawek had to sabkoi eisba. Ki kalpluk wet wa in jai. Baki kaise jai, kaise na jai. Ab deko tremb ka karis bhaiya. Tremb boli orlok karis na na na na. First care up karis e visum regeling na Amerika. To mensen, voor studenten, voor buitenlandse studenten en journalisten. John jai ke hua pe visum aanvraag karis Amerika ke. Deze maatregel in de nieuwste stap Trump begeleid kan illegale immigraties te verkennen. Orubole hega verblijf die 240 dagen gekale Amerika met toeristen. Studieprogramma's als journalisten krijgen maximaal verblijf van 240 dagen. Ongeveer 8 maanden toeristen. Chinese journalisten, Chinoise journalisten, ook mag 90 dagen hoe per heke. To eise eise ukarde isega ki journalisten ke bemoeilijker immigratie aanpak van Trump die zich kenmerkt zo streng handhaven in de grote steden. To je baat hai hamari janta Amerika ke baare mein. Ja, batawe Amerika 2023-2024 tak 1,1 miljoen internationale studenten, meer dan enig andere land. Deze studenten droegen 2023 50 miljard dollar bij de Amerikaanse economie ke baare mein. To janta hambo dit ruk ke batai di turia kaise hai Amerika ke tulon Suriname mein jitra log hai us sab ke kaise fisam hai mahamat al algemeen ki betwa scherp kaise kabul hai an Trump an betwa in dem streng kar dise. To janta hum chalte hai aur aage ko apna program ko lekar bada bada news aante log ko hum deli naya naya news deli hai aur kabel bada jor se naam mein chori hue bhaiya tel sir ke kabel je gharwa tarwa na kamayega na to boliye ka bhai na hua choran bhaiya kabalwa kaadde ve hai ga tel sir ke chiyo kaadde ve hai to command sami samujh bhi aa gaya hai bara der mein le केस नमस्कार होर केस जी आपको हम भी स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में तो हमारे जनता इन ब्रेकन क्रैश में फ्लुक्ट अब चोर लेके हो तो भागे भैया पांच सिपाही दौड़ावे अब चोर काकरी से चोर भागे हो तो लेके बस जाए के घुस गए गोथरो में नानी बकी खोल के बड़का गोथरो नाना ने चोरवा बुड़ के मर जात ओ तो हुआ ना उल्टन बकी ते होता फिर जाए के गोथरुआ में लगाई से चोर निकल के भगल सिपाही ना पकड़ पाई से बारा अफसोस के बात है भैया बड़ी अफसोस के बात है कि सिपाही ओके ना पकड़ पाई से और हमारे देखे में एक घंटा हो गया है हमारे यारो।

0: तो हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे जनता, घड़ी की ओर देखा जाए तो ये घंटा तो हमारा हो चुका है, तो समाप्त तो करना ही पड़ेगा ना।
1: मिका दो मैं सिंह सिंह की आला दे मास्टर दिनो सब ड्राई बेदी दिनो सब रोकना ग्रोंग ऐसा लेरा हर फारे फो रोकना ग्रोंग फामुस रोको ओके ठीक है बॉय।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी रोमांटिक जोंग रोमांटिक जोंग के मूड में है। मूवी के नाम है झनकार फन नई खतक और बलमा नई खतरी नई खतक का आशा भोसले का जोंग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो दिल लगी ना किया करो।

0: एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत के ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तनहा है, रूह

उसी का है संसार, एक आता एक जाता, ये जग का है व्यवहार। पावन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। सूरीनाम और नीदरलैंड से, सूरीनाम और नीदरलैंड से परिवार गंगा, परिवार अधीन, परिवार बिरजा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 17 तारीख जुलाई को सूरीनाम में सूरीनाम से तहत 5:30 बजे यानी हल्फ सेस 92 साल के आयु में बेटा जीवन अधीन की माँ, पतो इंदिरा की सास, पोतिन अनवीती की आजी, बेटी उषा की माँ, दामाद अमर बिरजा के सास, नाती और नातिन युवराज और वर्षा बिरजा के नानी, नद्दमाद और नदपतो प्रशांत और संगीता की ननिया सास, दो लड़के की परनानी, बेटी मालती की माँ, नाती शायर की नानी, दरहाक से बहनोई श्रीमान नंद कुमार गंगा की साली, बहन स्वर्गीय बैती गंगा की बहन और स्वर्गीय पति हरि अधीन की पत्नी, सूरीनाम परमारिबो के रहने वाली मोहिनी महाराज जी अधीन कल्लू के स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर, जिन्हें आप अखनेस और तंत अखनेस के नाम से भी जानते थे। सूरीनाम में अपने दिनों में वो खरीफीर थी। सूरीनाम में अर्थी आने वाला दिन 10 जुलाई शाम 2 बजे सूरीनाम में सूरीनाम से तहत वेखनर से ही उदय राज सिंह वर्मा क्रेमासी ओर्ट में दाह क्रिया किया जाएगा।

सुरिनाम और नीदरलैंड से परिवार गंगा, परिवार अधीन और परिवार वीरजा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 17 तारीख जुलाई सुरिनाम में सुरिनाम से तहत 5:30 बजे यानी हल्फ सेस 92 के साल के आयु में इंदलीफ से तुन निकंत यार

की परनानी, बेटी मालती की माँ, नाती शायर के नानी, देन हाक से बहनोई श्रीमान नंद कुमार गंगा की साली, बहन स्वर्गीय बैती गंगा की बहन और स्वर्गीय पति हरि अधीन की पत्नी, सूरीनाम परमारिवो के रहने वाली मोहिनी महाराजी अधीन कल्लू का स्वर्गवास स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर, जिन्हें आप अखनेस और तांत अखनेस के नाम से जानते थे। अपने दिनों में वो सूरीनाम में खरीफीर थी। अर्थी आने वाला दिन दख एन तुवेंदक यूली को शाम 2 बजे सूरीनाम से तहत वखनर से ही समुद्र के किनारे उदय राज सिंह फर्मा क्रिमासी ओर्थ में दाह क्रिया किया जाएगा।

यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार। सुनने वालों से निवेदन है कि ये खबर को और लोगों तक पहुँचा देने को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सभी परिवार गंगा, सभी परिवार अधीन और सभी परिवार गिरजा और बाकी परिवार को शोक संवेदना प्रकट कर रहा है।

और ओ मेरे दिल की चैन सहनाई मेरे दिल को और छुपाती चे परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है। हम चलते हैं अगला गीत की ओर जो है डीजे रेमिक्स ओल्ड इन जोन 1964 एंड 1990 और हिंदी जोन।

0: ठोपे ऐसी बात थी दब आके चली जाई तो हम जाते ये पर्दा हटाओ ना
1: जरा मुखड़ा।

ये पर्दा हटाडो और ये पर्दा हटाएंगे तो क्या क्या दिखाएंगे। तो चलते हैं बॉलीवुड तख्त सॉन्ग के ओर और आओ रिमिक्स हिंदी ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम यहाँ से और आपको और आगे सुनाते हैं। ये मुख वाले में जो खान स्विंग स्विंग स्विंग।

और जिंदगी एक सफर है और वो है सुहाना, और चाहे कल क्या होगा वो तो देखेगा जमाना। और हम दोस्तों और हम चलते हैं अगला और रीमिक्स सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड मेरा दिल ये हमारा दिल तो सदा पुकारते हैं। लातवे फ्रांस स्विंग

सारा जवाना, और सारा जवाने के बाद तो हम चलते हैं और बिंदिया चमकी है, बिंदिया कब चमते हैं

और बिनिया तो जरूर चमकेगी। और ऐसे तैसे थोड़े चमकते भैया, तो हम चलते हैं एक और गीत की ओर।

0: 2021, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: और दोस्तों आप लोग को आज हम कुछ गर्मा गर्म हॉट वॉर्म सॉन्ग सुनाएंगे। हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहना यूलिबुक वेल में जिकन स्विंग और न खाली स्विंग करियो नाच सके झूम सके है और फरखेट इट ओक ऑन स्टेबल वारे नगीन मन डोले मेरा और टंडोले भी है और दोस्तों हम जरूर जलते हैं हम कहां जलते हैं महबूबा की ओर महबूबा क्या करते हैं

ये दोस्तों मोफी के नाम थे शोले शोले एन शोले 1975 का सुपर हिट फिल्म थी। आज आप लोग को हम ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग

और क्या, भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगते हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो सुनते रहो। खनी तरफान वहां सामा खनी दुख

और क्या क्या क्या क्या खूब लगते हो, और खाली खूब नहीं सुंदर भी लगते हो।

0: मऊवी का नाम है, मऊवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। जोंग का नाम है ये पर्दा और हटा कर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना।
1: पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा।

It is Johnny number one's time. And Johnny's Johnny Boy's time, man. और दोस्तों आप जानते हैं, आज नाचना जरूर।

0: मैंने भी राह है रहेरी, उसके बाद हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कहाँ चलते हैं, रेडियो फाउन में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामतुआ और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
1: Shot Carewall on the beat.
0: And beat.

और मेरी नसीब में तू है कि हम है। रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी।

रामदायोगी, रामदायोगी के बाद हम और कहां जाते हैं, और कहां जाते हैं। जब किसी से प्यार हो जाता है तो इकरार भी करना चाहिए।

प्यार हुआ है, इकरार भी हुआ है, और जब प्यार होता है तो डरना मत चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। और प्यार से कभी कभी डरना मत, वैसे स्टेरक तो बेंस और जब घाम हो गया, जब घाम निकल गया, धूप निकल गया, तो छैया छैया चलना चाहिए।

और छैया छैया चलना, यारे मौसम मौसम मौसम, चाहे श्रीनाम में चाहे यहाँ पर, घाम में मत चलना, धूप में मत चलना, नहीं क्या होगा, छतरी लेकर चलना। और छैया छैया के बाद हम चलते हैं, अगर तुम्हारा दिल किसी पे आ गया और किसी ने जो आपको पुकारते हैं तो क्या करना चाहिए, हम बताते हैं क्या करना चाहिए।

यहां से पुकारते हैं कि आ जाना। और अगर आपको प्यार हुआ, दिलदार हुआ किसी परदेसिया से, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए, चाहे आपकी परदेसिया यहां हो, दनहाख में, अमस्टरडम, इथरे, ग्रोनिंगन, पारामारिबो, सरमक्का, निकेरी, जहां भी हो अपने परदेसिया को याद करना, जरूर करना। दिस इज जॉनी नंबर वन प्राइम टाइम।

परदेसिया परदेसिया इन परदेसिया एन मेंसे नाद परदेसिया अब क्या होगा दैट इज अनफर

और अनीसी अनीसी अनीसी और उसकी तो आए बाहर और जाने से क्या होगा रे बिग सॉन्ग ओह अरेंजमेंट से और होते हो पेज कभी किसी को चूम नहीं लेना किसी बात करना होठों से तो क्या होता है।

और ओठो पे ऐसी बात ही, और ओ बात क्या है दबा के चली आई। और उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, और ओ मेरी महबूबा।

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जों है दोस्तों, चटनी जों। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों कुछ सोकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेट सालिक की ओर, ये भी एक सोकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

और ये था सविता सिंह। दोस्तों कुछ शो का सॉन्ग आपके हमने सुनाए हैं, तो हम चलते हैं और वो है हरीश बालक की ओर। दोस्तों तो हरीश बालक आपको क्या सुनाएंगे, यहां से आपको हम सुनाते हैं।

मई तो लाई है कौनसी मजेदार लाए ही। और उस्तादो के उस्ताद हरीश वाले का गीत आपको हम सुनाए है दोस्तों। तो कुछ आज लोकल सॉन्ग आपको हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं राम प्रसाद राम खेलावन के ओर। वो क्या गाते हैं।

और कठिन भिन्न छोरा, तो ये गीत हम आप लोग को सुना दिए हैं हमारे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं और पातर मोरे लग्या, रॉबी गोगार इस गीत को गाए हैं। चलो सुना जाए।

जब आसमान शंकाओं से गहराता है, तब भी तुम्हारा उजाला जलता रहता है। जब मशीनें शाम को चुप हो जाती हैं, हवा हाथ अपनी भाषा बोलते हैं, हवा और पक्षियों के गीत के बीच तुम हर दिन फिर से अनेक लोगों की समृद्धि बिना शोर का।

मूवी यमला पगला दीवाना से आप सुनेंगे और आपको सुनाने वाले हैं उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। चलिए मिलकर सुनते हैं

है देव कि आजा तुझे प्यार करे, फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आपको सुनाने वाले थे उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। मैंने दिल तुम्हें दे दिया, अलका यज्ञिक के साथ में सुनो निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग।

ओ सनम फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश की है। अलका याग्निक और सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। एक और सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं इसी फिल्म से, आप सुनेंगे, तूने दी बेकरारी ए मेरे सनम।

गाने दी बेकरारी ए मेरे सनम, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किए हैं। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था राजा, एक थी लड़की दीवानी।

सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। अभी आप सुन रहे थे। पहली बार मोहब्बत की है, फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुमसे आप सुनेंगे। चलिए ये सॉन्ग हो जाए।

फ्रॉम द मूवी गाइड से अभी आप सुन रहे थे, लता जी के साथ में किशोर डा आपको मिलकर सुनाने वाले थे गाता रहे मेरा दिल तो ही मेरी मंजिल। मुकेश जी आ रहे हैं प्रोग्राम में ओ मेरे हमराही।

द माइटी मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ओ मेरे हमराहे क्यों तेरा मन घबराए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, फ्रॉम द मूवी वक्त से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, आशा भोसले जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए हैं। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, मोहम्मद रफी जी और लता जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के। लता जी और मोहम्मद रफी जी

आपको क्या सुनाएंगे बेहुरी। मैं सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम। फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

सुन रहे थे बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम आ गए पास हम। फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी, इस फिल्म से हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी।

वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता, ये जग का है व्यवहार। पावन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। सूरीनाम और नीदरलैंड से, सूरीनाम और नीदरलैंड से परिवार गंगा, परिवार अधीन, परिवार बिरजा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 17 तारीख जुलाई को सूरीनाम में सूरीनाम से तहत 5:30 बजे यानी हल्फ सेस 92 साल के आयु में बेटा जीवन अधीन की माँ, पतो इंदिरा की सास, पोतिन अनवीति की आजी, बेटी उषा की माँ, दामाद अमर बिरजा के सास, नाती और नातिन युवराज और वर्षा बिरजा के नानी, नद्दमाद और नदपतो प्रशांत और संगीता की ननिया सास, दो लड़के की परनानी, बेटी मालती की माँ, नाती शायर की नानी, दनहाक से बहनोई श्रीमान नंद कुमार गंगा की साली बहन, स्वर्गीय बैती गंगा की बहन और स्वर्गीय पति हरि अधीन की पत्नी, सूरीनाम परमारिबो के रहने वाली मोहिनी महाराज जी अधीन कल्लू के स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर, जिन्हें आप अखनेस और तंत अखनेस के नाम से भी जानते थे। सूरीनाम में अपने दिनों में वो खरीफीर थी। सूरीनाम में अर्थी आने वाला दिन 10 जुलाई शाम 2 बजे सूरीनाम में सूरीनाम से तहत वेखनर से ही उदय राज सिंह वर्मा क्रेमासी ओर्ट में दाह क्रिया किया जाएगा।

सूरीनाम और नीदरलैंड से परिवार गंगा, परिवार अधीन और परिवार वीरिया और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 17 तारीख जुलाई सूरीनाम में सूरीनाम से तहत 5:30 बजे यानी हल्फ सेस 92 साल के आयु में इंदलीफ यार बेटा जीवन अधीन की माँ पतो इंद्रा की सास पोतिन अनवीति की आजी बेटी उषा की माँ दामाद अमर बिरजा के सास नाती और नातिन युवराज और वर्षा के नानी नद्दमाद और नदपतो प्रशांत और संगीता के ननिया सास दो लड़के की परनानी बेटी मालती की माँ नाती शायर के नानी दनहाक से बहनोई श्रीमान नंद कुमार गंगा की साली बहन स्वर्गीय बैती गंगा की बहन और स्वर्गीय पति हरि अधीन की पत्नी सूरीनाम परमारिवो के रहने वाली मोहिनी महाराजी अधीन कल्लू का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर जिन्हें आप अखनेस और तंत अखनेस के नाम से जानते थे। अपने दिनों में वो सूरीनाम में ख्रिफीर थी। अर्थी आने वाला दिन दख एन तुवेंदख यूली को शाम 2 बजे सूरीनाम से तहत वेखनर से ही समुद्र के किनारे उदय राज सिंह फर्मा क्रिमासी ओर्थ में दाह क्रिया किया जाएगा।

यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार। सुनने वालों से निवेदन है कि ये खबर को और लोगों तक पहुँचा देने को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सभी परिवार गंगा, सभी परिवार अधीन और सभी परिवार बिरजा और बाकी परिवार को शोक संवेदना प्रकट कर रहा।

फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आप सुनेंगे और आपको सुनाने वाले हैं उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।

है देव कि आजा तुझे प्यार करे फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आपको सुनाने वाले थे उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। मैंने दिल तुम्हें दे दिया अलका याग्निक के साथ में सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग।

ओ सनम फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किया है। अलका याग्निक और सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। एक और सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं इसी फिल्म से, आप सुनेंगे, तूने दी बेकरारी ए मेरे सनम।

ने दी बेकरारी ए मेरे सनम, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किए हैं। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था राजा, एक थी लड़की दीवानी।

सारे प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। अभी आप सुन रहे थे। पहली बार मोहब्बत की है, फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुमसे आप सुनेंगे। चलिए ये सॉन्ग हो जाए।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: तो अगला गीत है ये फिल्म गाय तो आपने अवश्य देखे होंगे एस डी बर्मन के साज है और लता जी की आवाज में ये सेमी क्लासिकल सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे.

प्रिया तुसे नैना लागी रे, लता जी की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनाए हैं एस डी बर्मन के साज पर, और था फिल्म गायद में से निकाल कर। तो लीजिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, बस आपकी जानी पहचानी गीत है। जी हाँ, एक बार फिल्म आदमी में से निकाले हैं लता जी की आवाज़ में।

फिल्म आदमी व्यसन नौशाद अली के साज पर लता जी की आवाज़ में हमने पेश की कारी बदरिया, और लता जी के बाद हम पेश करते हैं एक बार फिर आशा जी को, और आशा जी कह रही है चेहरे पे खुशी आ जाती है, तो चलो सुनते हैं और जानते हैं कि चेहरे पे कितनी खुशी आती है।

लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं, जहाँ तक मेरा ख्याल आप बहुत इत्मीनान से सुन रहे होंगे ये गीत और बहुत सुन रहे थे ये शानदार गीत उफ़ुरफ़ान हिंदुस्तानी रेडियो। अच्छा चलिए, गीत तो समाप्त हो गया, तो गीत अगर जो समाप्त हो गया तो हम पेश करते हैं अगला गीत, और जिसमें लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार है, रूप तेरा मस्ताना नेगेटिव ट्विन सही सुनता।

दिल की बातें दिल ही जाने। लता जी और किशोर कुमार जी मिलके आपको सुनाई ये शानदार गीत, और हमने पेश की फिल्म रूप तेरा मस्ताना में से निकाल कर 1972 का ये फिल्म है, आनंद बख्शी की लिखी हुई गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलो हम पेश करते हैं, बढ़ते हैं चोरी चोरी के ओर। फिल्म चोरी चोरी में जितनी गाने हैं सब बहुत प्यारा है, उनमें से एक गीत मैं निकाल रहा हूँ, बस आप सुनिए कौन सा गीत। लता जी और मन्ना डे जी,

पंछी बनू बन के फिरू, लता जी की आवाज़ में फिल्म चोरी चोरी में से निकाले हैं ये शानदार गीत। हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए आपको धीरे धीरे मैं कहीं और ले जा रहा हूँ, जी हाँ धीरे धीरे कहीं और ले जा रहा हूँ, और आपको सुनाता हूँ ये गीत।

द मैन विद गोल्डन वॉइस, तलत साहब में आपको सुनाए हैं, उनके आगे गमे दिल भुलाना पड़ा और ये शानदार गीत छुपाना पड़ा। और ये शानदार गीत हमने पेश किया वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो www.fmpintanl पर। आप चुने जो लोग चुन के इन मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। हमने कहा था धीरे धीरे आपको पीछे लग जाएंगे सालों में, तो लीजिए हम आपको ये सुना रहे हैं। क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ इस तरह से?

हाँ, दिल से मिला ले दिल प्यार कीजिए, और ये गीत चला है लता जी आपको सुनाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, हमने कहा था आपको पीछे पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, तो लीजिए पीछे ले जाते समय हम आपको ये भी सुना रहे हैं उसी समय का। ये बहुत प्रचलित गाना था, बहुत पॉपुलर था, कौन इसे नहीं जानता।

दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म बहार। जी हाँ, फिल्म बहार में से निकाले हैं ये शानदार गीत, बहुत पुराने गीत जहाँ तक मैं आया, मेरे ख्याल है कितने लोग यही गाना सुन सुन कर आज बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए, आजा हो गए, आजी हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, यहाँ की पर राजा पर नानी भी हो गए होंगे। और ये शानदार गीत हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, उम्मीद है इस गीत से आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गए होंगे। क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म, बिन फेरे हम तेरे, नेगनती नेगन सैफ तक का ये गीत उषा खन्ना के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। जी हाँ, ये गीत हो सकता है बहुत दिनों बाद आज आप सुनोगे, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, लेकिन ये भी मुमकिन है कि शायद हमारे सहयोगियों ने चलाए होंगे, तो मेरी बदनसीबी है, लेकिन गीत तो मैं चलाऊँगा अवश्य। रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म बिन फेरे हम तेरे।

दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के रहना है रफी साहब। और उषा खन्ना के साथ पर, उषा खन्ना जी के साथ खुद निकती नेकन सैफ तक का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो ये है

0: इन प्यार की राहों में ये शानदार गीत चलाया कार्यक्रम में हमने पेश की। हमने शायद तेरे गीत रखे हैं, इसे हम चुन नहीं किए हैं, सुने भी नहीं हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं उसका टाइटल, अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं कि लता जी क्या कह रही है। फिल्म है गरम खून, अरे वाह क्या बात है, फिल्म है गरम खून और लता कह रही है मैं अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं।
1: अच्छी भी

आ जा रे आ जा सनम, अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ, शंकर जय किशन के साज था। जी हाँ, निकली ताकत का ये फिल्म है, फिल्म गरम खून जैसे गरम खून है वैसा फिल्म की गीत भी है और लता जी आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म पूर्णिमा में से।

Mighty Mukesh, The Heart of Millions, और लता जी फिल्म पूर्णिमा में से निकाल कर ये गीत हम पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं हम अगला गीत चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, फिल्म मिलाप में से निकाल रहे हैं, ये भी निकिता ट्विन सैफ तक का है, ब्रिजभूषण के साज पर। और चलिए हम आपको सुनाते हैं मैथी मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

बातें दिल ही जाने लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिल के दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सेफन तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफीकिया आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी राज।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति एन सैफ तक का ये गीत है, चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं, आप सुनोगे मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सेवन तक का ये गीत, 1971 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा, करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54 यानी 400 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगत ए नसीब का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले है एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं। बहुत सारे सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त। जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया। फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं। जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है। तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं कि सिलसिला हम आपको सुनाएं, ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफन सैफन दुख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओ फरफाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

0: तुम्हें ने दिल को दिल समझा नहीं है। मैथ मुकेश फिल्म चांद ग्रहण में से ये गीत हमने
1: हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अदवकातन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten, omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: Fahon Hindustani Radio ka awaaz ka duniya ke dosto swikar kijiye hum logo ka sagar sa bhara hua pyar namaskar aur saath hi saath kabool ho Fahon Hindustani Radio ka mohabbat se bhari hui salam ko main hu aap logo ka sevak khidmatgar Suren Krishna Dutt Bhagwan Din jise aap dher sare shrota guno Akashwani ke dosto bhaiya Birbal ke naam se bhi jante hain का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। अब हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैं दिल फील लश्तर प्लेजीर के साथ ये आशा उम्मीद है कि आज का सिलेक्शन आज श्रोताओं को जरूर पसंद आएगा। सरनामी संगीत और कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री लेकर उपस्थित हुआ हूँ यारो। ये यशो उम्मीद है कि आप सभी को जरूर पसंद आएगा। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आपके सेवा और खिदमत में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लेस रेडियो पर नतुलक उक्त बुलाइस्त्र फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। दफ्तर का तार का नंबर 0703626247 या तो आप तार करें आप 0703626277 पर। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो एक काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। En niet te vergeten, hè, onze kwaliteit is uw garantie. En natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, zoals altijd, voelt u zich altijd lekkerder bij Fahon Hindustani Radio. En ze spelen absoluut ik het is een programma, Sune, toch als kerke Rosita Behenji absoluut ook een seome peski. Die stout rikse Rosita Giap. श्रोताओं को हमेशा की तरह सेवा करती आ रही है, ये आशा उम्मीद है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आम श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से रोशिता बहन जी, और आपको भी एक शुभ दिन पेश हो। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, हो सकता है कि शायद आपके घर पे एक बेटी या तो एक बेटा ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। विवाह संस्कार तो हो सकता बीत चुका होगा, कंगन भी शायद छूट चुका होगा। जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही बीती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं, नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो, गमी में, तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिल फिल स्तर्क सिटी, जो बीमार लाचार है आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए और जिंदगी के मजे जरूर रोजाना लेते रहना। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना और थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर रेक्लाम भी बनाते रहना, चर्चा भी करते रहना। फनहर्त बेहतर खाप। आप कामयाब हुए हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, और आप शायद कामयाब नहीं हुए हो बंधु, तो चिंता के कोई बात नहीं है ना। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास, भरोसा, यकीन, सेल्फ ट्रस्ट जोर तोर से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है जल्द से जल्द कामयाबी दौड़ दौड़ कर आकर आपके कदमों को चूमेंगे। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी यारो, रथ वो तो नोट ऑप इसमें प्रवेश हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम। फैन फकंसी ब्लाइव लाइस्टर नार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, यू गोन लाइक इट ऑफ कोर्स। और हो सकता है कि आप भी शायद देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ यात्रा। फैन फकंसी खनीतर फाउन एन अतिरिक्त ब्लाइव लाइस्टर नार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इंटरनेट के लहरों द्वारा या तो दप्लिस रेडियो के लहरों द्वारा द्वारा सो बेंट फन अलस ऑफ द होक्त फन यू फाफोरी तरा दे स्टेशन एंड लतिस नतुर्लक हमारे दैन हक शेयर का द वन एंड द ओनली फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। और हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी बदमा श्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गालो मुस्कुरा लो, महफिली सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से यहाँ से सदियों से यही कहते आ रहे हैं यारो की हैप्पी नाउ स्टॉप द लाइफ कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे एक अति सुंदर प्रोग्राम, खास करके हमारे सरनामी संगीत का, अपने लोगों का ये अति सुंदर महान संगीत जो आजकल हमारे दुनिया भर में लोग पसंद करने लगा है और बड़े प्यार से सुनते हैं, ठुमका भी लगाते हैं। और उसके बाद कुछ नए नए आवाज़ें लेकर आया हूँ, थोड़ा बहुत सरप्राइज है, कुछ ऐसे ऐसे कलाकार के आज मैं पेश करने वाला हूँ कि सुन के आपके दिल जरूर थम जाएगा। तो ज़रूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहाँ पर भी हो, जिस साल में हो, फाहम हिंदुस्तानी जो की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो, पेश हो मैं थी लॉयस्टर प्रजीर के साथ रफी साहब जी।

फिले सजा लो, रवि साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त आ गया है वही महान संगीत जो आप श्रोताओं को साप्ताहिक में पेश कर रहा हूँ। काफी दिनों से मैं पेश करने वाला हूँ हमारे सूरीनाम देश का एक महान इंटरनेशनल कलाकार, उस्तादों का उस्ताद श्री पंडित क्रीस राम खेलावन जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे ओपनिंग सिलेक्शन लेकर बालम की मुझसे रूठ के कहाँ तू गए लो।

शाबाश शाबाश शाबाश सुरीनाम देश का महान कलाकार इंटरनेशनल कलाकार द वन एंड ओनली पंडित श्री कृष्ण राम खेलावन जी। अगला बयान हमारे हॉलैंड देश का द लायन ऑफ बैठक गाना को लाते हैं प्रोग्राम में उस तारों का उस्ताद देवेंद्र सिंह शिवनाथ का ये जबरदस्त मेटली और वो तकरीबन

12:30 मिनट चलेगा, तो जरा सुनिए, एंजॉय कीजिए और ठुमका भी लगाइए। के ना लागी मैटली देवेंद्र सिंह शिवनाथ विथ हिज बैठक गाना ग्रुप स्वास्तिका लाइव।

Ekdam शाबाश शाबाश शाबाश, ये अशोमी देख के आप लोग जरूर जहाँ पर भी हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सुन रहे हो या तो जहाँ पर आप सुने ये अति सुंदर बयान को आप लोग जरूर एंजॉय किए होंगे। कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो, जोर तोर से सरनामी संगीत चल रहा है, साप्ताहिक प्रोग्राम खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। अगला बयान इस बड़ी न्यू चटनी सॉन्ग और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को शशि सुखा शोकोलाद भैया।

0: बिल का।
1: क्या बात है, एकदम शाबाश शाबाश, बहुत ही सुंदर बयान है, मजेदार सॉन्ग सुनाए आप सभी को। उभरता हुआ गायक शशि सूखा अलियास आका बिगामान, न्यू चटनी सॉन्ग 2024 से निकाला हूँ आप श्रोताओं के सेवा में। और महान गार्नियर वाली हमारे सूरीनाम देश का, हॉलैंड देश का, मेयर बकेंट अस द फ्रोइटी फ्रो, श्रीमती उस्तादीन मनराजी लक्ष्मण जी के ये ब्यूटीफुल मजेदार सॉन्ग। मौसम तो ऐसे है ना, तो मिल के सुनते हैं।

शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाली हमारे सरनांदेस हॉलैंडेस का मेयर बकैंत आज द फ्रोईती फ्राउ श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी बैठक गाना का एक जबरदस्त महान उस्तादीन। कौन नगरिया जाऊं मैं, एक और महान गायक हमारे सूरीनाम देश का, द मैन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी, उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो रॉबी उदित राम।

भाई शिव उस्तादों का उस्ताद, महान गायक हमारे सरनाम देश का बैठक गाना का गुरु, द वन एंड ओनली मास्टर रॉबी उदित राम। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरिनाम देश हॉलैंड देश का चैंपियन बैठक गाना सिंगर और बैठक गाना का महा महा गुरु उस्तादों का उस्ताद श्री रामदेव चैटू, वन ऑफ माय फेवरेट।

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश शाबाश। सुरिनाम देश सोलेंडेस का महान गायक, उस्तादों का उस्ताद और बैठक गाना का एक महागुरु द ग्रेट रामदेव चैतु जी। अगला बयान एक और महान गाने वाली हमारे सुरिनाम देश सोलेंडेस का द चटनी क्वीन बिजानवती चैतूस, और वो सुनाती है सही मांदी तपमी।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है दापलिस रेडियो पर नतुलक उक्त बलैस्त्रिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम एंड नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतुलक बदंत। रेडियो का काम हो डेंक अल्टेटन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट से दाम सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ। आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, खास फरमाई से हो या तो जरूरी खबरें हो, जो भी खबर हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप सभी से सदियों से यही कहती आ रहा हूँ यार कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलेटेरेंस कंटोर यूरो ऑफ न्यूज सीमत ग्री फैंस तक तक पर या तो आप तार करें ऑफ न्यूज सीमत ग्री ट्वेंटी तक पर। जो भी रेडियो का काम हो डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खेन लेत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेरिस कंतूर इरफान मांडा तो फ्रेडा op 070-365-2047 je hebt op 070-362-2077 per. Aap bhi Fahun Hindustani Radio ka member bane aur roko bhi banaye. Isi tarah hum logon ke bare mein charcha karte rehna yaar aur reklam banate rehna. Hats off to all of you aur hamare full team ki taraf se aap iske liye aap sabhi ko teh dil se dhanyawad. वादा के मुताबिक लेकर बढ़ते हैं हमारे शरनामी संगीत के तरफ यारो, दूसरा अध्याय हमारे प्रोग्राम का। और इसमें कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक हॉलैंडेज के कुछ कलाकार, कुछ हमारे सरनाम देश के कलाकार आप सुनेंगे। तो एक अति सुंदर चटनी मिक्स है जो आपको सुनाने को जा रहे हैं। इट्स चैतु मिक्स गाने वाली ती फनी पूरन के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए।

Beautiful song, tornati a Persevico, the great Monsieur Ganevali Zamaneka, the great Tiffany Purrenji. इतने भड़कते हुए सॉन्ग के बाद आप सुनेंगे एक ब्यूटीफुल सोल सॉन्ग, बिल्कुल नया सॉन्ग है, कुछ 3 दिन हुए है निकले हुए, और गाने वाला है द वन एंड ओनली द ग्रेट सिंगर उमर वाहिद हुसैन का, बिल्कुल नया सॉन्ग है, कॉफर सॉन्ग बाय उमर, जिन्हें हम भूलना चाहें।

Beautiful mashup by Prabhat Panchu, music by Selecta Beats. From the number one gardening expert. अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं दो मशहूर गाने वाले हमारे सूरीनाम देश का, निशा मदारन और डेल प्राडो। हमारे बुजुर्गों को शायद याद होगा कि द ग्रेट इंडियन ऑर्केस्ट्रा फ्रॉम सूरीनाम आईडीआर 5-6 तक में एक गिटार प्लेयर और बहुत ही अच्छा गाने वाला रफी साहब जी का एक गायक भी था, उसका नाम भी डेल प्राडो था। हो सकता है ये दोनों परिवार है, तो मिलके सुनते हैं तिनका तिनका, निशांत रूबेन डेल।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है सुनाया आप सभी को, मशहूर गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का डे ग्रेट निशा मदारन कॉफर्ट बाय टुगेदर विद ग्रेट सिंगर फ्रॉम सुरीनाम रूबेन डेल प्राडो। अगला बयान मुझे तुमसे प्यार है, मशहूर गायक इंडिया और हॉलैंड देश का डे ग्रेट शेखर कुमार।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को। मशहूर गायक भारत देश से आया हुआ, हॉलैंड देश में काफ़ी दिनों से, फनफ 1986 से ढेर ऑर्केस्ट्रास में ये गा चुका है, महान गायक द ग्रेट शेखर कुमार। सुनाने को जा रहे एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंड देश का, आया तो है पाकिस्तान से, इन यार 83 से सेटल हो चुका है और ये भी ढेर ऑर्केस्ट्रास में गा चुके हैं, मैस्ट्रो बॉबी जेकब का बिल्कुल नया सॉन्ग।

सुंदर बयान जिसने सूली को तराशा होगा। महान गायक पाकिस्तान से आया हुआ हॉलैंड देश में रहता है, जबरदस्त गायक द वन एंड ओनली मैस्ट्रो बॉबी जेकब। हमारे भी प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आफ्टर द ब्रेक कहीं

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753562 तक सेफ न फेटा। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

सलाम तकदीर से ये सुंदर सा गीत निकाला गया आप ही के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये लता जी के आवाज में आप और हमने श्रवण कर लिए। जिस इंसान के पास अच्छा गुण नहीं होता है, जिस इंसान के पास अच्छा गुण नहीं होता है, वो दूसरों में कमियां निकाल निकाल कर उसकी बुराई कर कर के खुद को महान बनने की कोशिश करता है। तो ये मत करो, जरूर से कुछ अच्छा से गुण अपने में लाओ ताकि आप भी महान बन जाए।

सुहानी चांदनी रातें आपको और हमें भी सोने नहीं देते, ऐसा कभी कभी हो ही जाता है, क्या करे बेचारा दिल। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्यारे सुनने वालों कि आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि इसका वजह भी ये है कि जैसे लोग चाहते हैं ना आप वैसे नहीं करते, तो बेवजह आप बुरा बन जाते हैं। मदा सहे को कठपुतली मत बनो।

dankbaar zijn voor elke dag. Dankbaar zijn voor elke dag die ik beleven mag, die u beleven mag. Een dag boven mijn hoofd, een dak boven uw hoofd, een dak boven ons hoofd en eten op ons bordje. Soms zit de gezondheid niet altijd mee. Dat hebben we ook niet in ons handen grotendeel, maar we zijn er. Maar we zijn er daarbij. Daarvoor moeten we dankbaar zijn. Aise kitne vyakti jo sote hain aur subah ka waqt जो अपनी आंखें नहीं खोल पाते हैं और क्या कहे जिंदगी भी ऐसे है जब हम आए हैं इस धरती पर जन्म ली है तो हमको भी एक रोज तो ये शरीर को भी छोड़ना है इसलिए जब जब हम हमारे जीवन में हमको मौका मिलता है एक दिन बसर करने के लिए तो जरूर से इसे खुशहाल होके हंसी में धन्यवाद अदा करना चाहिए दांगबार रहना चाहिए आपके लिए माँ के बारे में दो चार शब्द यहाँ से हम ला रही हूँ आश मदर मो इज हेल्प हार दान आश मदर फेयर वेख इज बेल हार दान असफरदृतक इज त्रोस्त हार असफॉल खदाख्तन इज लुइस्टर दान नार हार अस से सोर्ख माक कुम्युफल हार ये हैप मार एन मदर En ze is kostbaar, evenals een vader. Niemand en nog eens niemand kan een plaats van een moeder, vader, broer en zus innemen.

लेकर आया है नए नए गीत, नए नए तराना आपके लिए। गीत जो हम अक्सर नहीं सुनते हैं आपके लिए पेश किया जाता है फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य यानी कि खसौंत है सबसे बड़ा उपहार है। नखरोस्त कदो दैट इज ओंस खसौंत है। संतोष, संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये लाइफ, ये जिंदगी आपकी है, बस अपने स्वभाव में जियो। आपके लिए वादिया मेरा दामन फिल्म अभिलाषा से आपके लिए पेश किया जाता है, और ये भी रफ़ी, पहला भाग में रफ़ी जी के आवाज़ में और दूसरा भाग में लता जी के आवाज़ में हम यहाँ से सुनेंगे।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उनके आगे सर झुकाती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार, मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

मैं अपना प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ स्वपन विज्ञान, और इसमें आज मैं आपको बताऊंगी सुनने वालों कि आपको किस दिन क्या कार्य करना शुभ है।

यात्रा में शुभ। सुनने वालों, अगर आप रविवार को कहीं जाना चाहते हो तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में शुभ माना जाता है, और ग्रह दिशाएं आग्नेय दक्षिण पूर्व की ओर शुभ मानी जाती है। सुनने वालों, अगर आप सोमवार को यात्रा में जाना चाहते हो तो पश्चिम और दक्षिण दिशा शुभ मानी जाती है। सुनने वालों, और ग्रह दिशाएं वायव्य उत्तर पश्चिम में शुभ मानी जाती है। मंगलवार वाले दिन दक्षिण पूर्व में शुभ मानी जाती है और आग्नेय दक्षिण पूर्व में शुभ माना जाता है। सुनने वालों, अगर आप यात्रा पे जा रहे हो और बुधवार का दिन है तो दक्षिण में शुभ माना जाता है। सुनने वालों, और पूर्व दिशा में शुभ माना जाता है, और नेतृत्व दक्षिण पश्चिम दिशा में शुभ माना जाता है। सुनने वालों, अगर आप वीरवार यानी बृहस्पतिवार को कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो पूर्व की दिशा में शुभ माना जाता है और उत्तर दिशा में शुभ माना जाता है, और ग्रह दिशाएं ईशान पूर्व उत्तर में शुभ मानी जाती हैं। सुनने वालों, और अगर आप शुक्रवार को कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में शुभ होता है पूर्व और उत्तर दिशा की ओर जाना, और ग्रह दिशाएं ईशान उत्तर पूर्व में शुभ मानी जाती हैं। सुनने वालों, अगर शनिवार को आप यात्रा पर जा रहे हैं तो पश्चिम और दक्षिण दिशा में शुभ मानी जाती है, और ग्रह दिशाएं नेतृत्व दक्षिण और पश्चिम दिशा में शुभ मानी जाती है। सुनने वालों,

सुनने वालों, मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ विद्या एवं शिक्षा संबंधी जानकारी के। जो लोग विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, उनके लिए कौन से शुभ दिन हैं सुनने वालों? दिन सोमवार। विज्ञान, इंजीनियरिंग, सेना, उद्योग, बिजली, मेडिकल एवं प्रशासनिक शिक्षा संबंधी शुभ माने जाते हैं। दिन सोमवार। लेखनादि कार्य यानी लिखने का कार्य, मेडिकल शिक्षा, सौंदर्य प्रस्थान यानी कि कॉस्मेटिक, औषधि निर्माण व योजना संबंधी शिक्षा, ये शुभ माने जाते हैं सुनने वालों। दिन मंगलवार। बिजली, सर्जरी की शिक्षा, शास्त्र विद्या सीखना, अग्नि, स्पोर्ट्स, भूगर्भ विज्ञान, दंत चिकित्सक की शिक्षा शुभ मानी जाती है सुनने वालों।

ये मैंने आपको बताया था मंगलवार वाले दिन का। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, दिन बुधवार। गणित, लेखनादि, भौतिक कार्य, बैंक वकालत, तकनीकी हुनर, ज्योतिष विज्ञान, वाहन आदि चलाना सीखना, ये शुभ माने जाते हैं सुनने वालों। अब दिन वीरवार, दर्शन शास्त्र, धर्म मंत्र, ज्योतिष वकालत, उच्च पद प्रशासनिक शिक्षा, वैदक आदि शिक्षा शुभ मानी जाती है सुनने वालों। दिन शुक्रवार, नृत्य, वाद्य, गायन, कला संगीत, एक्टिंग, गीत काव्य रचना, स्त्रियों एवं सौंदर्य संबंधी शिक्षा ग्रहण करना शुभ मानी जाती है सुनने वालों। दिन शनिवार, तकनीकी शिल्प, कला, मशीनरी संबंधी ज्ञान, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का ज्ञान शुरू करना शुभ माना जाता है सुनने वालों।

सुनने वालों, मैंने भी आपको बताया कि विद्या एवं शिक्षा संबंधी जो भी हमें कार्य करने हैं वो किस किस दिन करने हैं और वो दिन शुभ माने जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, व्यापार संबंधी कार्य कि जो हमें व्यापार शुरू करना है यानी किसी चीज़ का भी बिजनेस करना है तो वो कौन सा काम किस दिन शुभ है वो तब हमें करना चाहिए। रविवार, रविवार को हमें प्रशासनिक कार्य, सेनाधिकारी, ज्वेलर्स, औषधि शास्त्र, अग्नि, अनाज, सोना, तांबा, चांदी, गाय बैल आदि का क्रय विक्रय, मेडिकल, इलेक्ट्रिकल, मंत्रानुष्ठान, यज्ञ आदि, ये जितने भी कार्य हैं ये हमें रविवार को करने चाहिए और रविवार का दिन शुभ माना जाता है सुनने वालों।

अभी मैंने आपको बताया रविवार के दिन के बारे में, रविवार यानी सोमदक। अब हम आगे चलते हैं दिन सोमवार। इसमें हमें कौन से कार्य करने चाहिए? कृषि संबंधी कार्य, व्यापार करना चाहिए, गाय भैंस दूध घी डेयरी फॉर्म औषधि शंख मोती स्त्री धन संपदा सौंदर्य प्रस्थान सुगंधित संबंधी वस्तुओं का कार्य विक्रय विदेशी पत्राचार आदि। यानी कि जितने भी कार्य हैं ये हमको सोमवार को करने चाहिए, जो कि शुभ दिन माना जाता है सुनने वालों।

सोमवार से हम आगे बढ़ते हैं दिन मंगलवार। शक्ति अग्नि या बिजली से संबंधित कार्य बेकरी स्पोर्ट्स सोना तांबा मूंगा पीतल आदि का कार्य भूमि सर्जरी या रक्षा सामग्री संधि विच्छेद आदि कार्य ये जितने भी कार्य हैं या व्यापार हमने शुरू करना है बिजनेस शुरू करना है तो मंगलवार को शुभ है सुनने वालों।

मंगलवार के बाद हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दिन बुधवार, कृषि एवं व्यापारिक वस्तुओं का क्रय विक्रय, यानी जितनी भी कृषि की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनका लेन देन, शेयरों का कार्य, पुस्तक लेखन प्रशासन, लेखा कार्य, शिक्षण, वकालत, शिल्प एवं संपदान कार्य, वाहन कार्य विक्रय, यानी हमें कोई भी वाहन लेना है, खरीदना है या देना है, या कुछ भी हमें उसका व्यापार शुरू करना है, या शेयर बाज़ार में हमें कुछ शुरू करना है, या कोई पुस्तक, अरे कोई दुकान हमने खोलनी है, तो वो हमें बुधवार को शुभ दिन है सुनने वालों, बुधवार को शुरू करना चाहिए।

बुधवार के बाद हम आगे चलते हैं सुनने वालों, दिन वीरवार यानी दौंदरदाह। धार्मिक अनुष्ठान, उच्च प्रशासनिक कार्य, उच्च शिक्षा के कार्य, आभूषण, औषधि, लकड़ी, भूमि, वाहन आदि का लेन देन, विदेश गमन आदि कार्य। यानी कि हमने वीरवार को धार्मिक अनुष्ठान के कार्य जितने भी हैं और शिक्षा के कार्य जितने हैं, आभूषण हमने कुछ व्यापार करना है, दवाई है, लकड़ी है, भूमि है, या हमने विदेश भी जाना है, तो वीरवार को शुभ दिन माना जाता है सुनने वालों।

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि अगर विदेश जाना है और व्यापार संबंधी के कार्य करने के लिए यानी बिजनेस के लिए, तो वीरवार को शुभ माना जाता है, शुभ दिन माना जाता है। सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। दिन शुक्रवार, संगीत, सिनेमा, विदेश, टेलीविज़न, स्त्रियां एवं श्रृंगार वस्तुएं संबंधित कार्य, रुई, कपड़ा, बैंकिंग, चांदी, जवाहरात, रसायन, शराब, सोडा, सुगंधित द्रव्य, वाहन आदि कार्य विकार्य, खूबसूरत वस्तु, ये सब चीज़ें शुक्रवार को व्यापार शुरू करना चाहिए इनका। सुनने वालों,

मैंने आपको बताया सुनने वालों कि शुक्रवार को विदेश जाना है या टेलीविज़न का व्यापार खोलना है या स्त्रियों के श्रृंगार की दुकान खोलनी है या चांदी सोना जेवरात की दुकान खोलनी है रुई और ये जितनी भी चीज़ें हैं तो ये शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है। व्यापार करना है बिजनेस करना है जो कुछ भी जिसने करना है शुक्रवार का दिन शुभ है। अब हम आगे चलते हैं दिन शनिवार। शनिवार को मशीनरी लोहा लकड़ी चमड़ा सीमेंट तेल पेट्रोल पत्थर भूमि ठेकेदारी शास्त्रों का कार्य विक्रय ऑपरेशन कार्य अधीनस्थ कर्मचारी वाहन आदि प्रयोग विदेश यात्रा आदि कार्य ये जितने भी कार्य हैं ये शनिवार के दिन शुभ माने जाते हैं। सुनने वालों

सुनने वालों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से दिन नया वस्त्र पहनना चाहिए, कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ है। नवीन वस्त्र धारण करना यानी कि नए

को रविवार वाले दिन नहीं लगाना चाहिए, अशुभ माना जाता है सुनने वालों। हजामत करना यानी कि दाढ़ी बनाना, वो रविवार वाले दिन मध्यम ठीक, ना शुभ है ना अशुभ है, बीच का है, मिडल वाला है, यानी ठीक भी है नहीं भी ठीक। नया जूता पहनना, अगर हम नया जूता पहनते हैं तो रवि वाले दिन नहीं पहनना चाहिए, उसे अशुभ माना जाता है सुनने वालों। मुकदमा करना, यदि हम किसी के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं या कोई भी चीज़ का झगड़ा है तो रविवार वाला दिन अशुभ माना जाता है सुनने वालों।

सुनने वालों, रविवार वाले दिन के बाद अब हम चलते हैं सोमवार वाला दिन, कि सोमवार वाले दिन हमें क्या चीज़ करनी है, वो शुभ है और कौन सी अशुभ है। नवीन वस्त्र धारण करना, सोमवार को अगर हम नया वस्त्र पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो माध्यम वो शुभ भी है अशुभ भी है। नवीन आभूषण धारण करना, सोमवार को अगर हम नए गहने धारण कर रहे हैं, नए गहने पहनने हैं, तो वो शुभ माने जाते हैं। सुनने वालों, तेल लगाना, अगर हमने तेल लगाना है, बालों में तेल लगाना है या शरीर में तेल लगाना है, सोमवार को वो भी शुभ माना जाता है। सुनने वालों, हजामत करना, अगर हजामत करनी है तो सोमवार को उसे भी शुभ माना जाता है। सुनने वालों, कि लोग जो लोग हजामत करना चाहते हैं, दाढ़ी बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं। अगर बाल कटवाना चाहते हैं, बाल भी कटवा सकते हैं। नया जूता पहनना, अगर हम सोमवार वाले दिन नया जूता पहनना चाहते हैं, तो वो भी शुभ माना जाता है। सुनने वालों, मुकदमा करना, अगर हमने किसी के ऊपर मुकदमा करना है तो वो अशुभ माना जाता है, तो सोमवार को हमको नहीं करना चाहिए। सुनने वालों,

सोमवार के बाद हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, दिन मंगलवार कि मंगलवार वाले दिन कौन सी चीज़ें शुभ है और कौन सी अशुभ है। नवीन वस्त्र धारण करना, मंगलवार को अगर हम नए कपड़े पहनते हैं तो वो अशुभ माने जाते हैं सुनने वालों। नवीन आभूषण धारण करना, अगर हम नए गहने पहनना चाहते हैं तो वो माध्यम ठीक भी है, शुभ भी है, अशुभ भी है, दोनों ही हैं सुनने वालों। तेल लगाना, अगर हमने तेल लगाना है बालों में, शरीर में, तो अशुभ माना जाता है, मंगलवार वाले दिन तेल नहीं लगाना चाहिए सुनने वालों। हजामत कराना, अगर हम हजामत करना चाहते हैं, बाल काटना चाहते हैं, तो मंगलवार वाले दिन वो अशुभ माना जाता है सुनने वालों। हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए मंगलवार वाले दिन, किसी और दिन कटवाने चाहिए। नया जूता पहनना, अगर नया जूता पहनना है तो मंगलवार वाले दिन वो अशुभ माना जाता है। मुकदमा करना, अगर हमने किसी पे मुकदमा करना है वो मंगलवार वाले दिन शुभ माना जाता है सुनने वालों, क्योंकि वो शुभ दिन है मुकदमा करने के लिए मंगलवार वाले दिन। कई चीज़ें मंगलवार वाले दिन शुभ भी हैं, कई अशुभ भी हैं, ज़्यादातर अशुभ होती हैं, क्योंकि हमने भी सुना था कि मंगलवार वाले दिन हमारी दादी नानी कहती थी ये नहीं करना वो नहीं करना, कई बार हम कर लेते थे कई बार नहीं करते थे सुनने वालों।

मंगलवार वाले के दिन के बाद हम आगे चलते हैं सुनने वालों। दिन बुधवार, नवीन वस्त्र धारण करना शुभ, नए कपड़े पहनना बुधवार को शुभ माना जाता है सुनने वालों। नवीन आभूषण धारण करना शुभ, नए गहने पहनना भी शुभ माना जाता है सुनने वालों। तेल लगाना विशेष शुभ, बुधवार वाले दिन अगर तेल लगाना है तो बहुत अच्छा विशेष शुभ माना जाता है सुनने वालों। हजामत करना शुभ, बुधवार को अगर हमने बाल कटवाने हैं, आदमी लोगों ने अपनी दाढ़ी बनानी है तो शुभ माना जाता है सुनने वालों। नया जूता पहनना बुधवार वाले दिन शुभ माना जाता है। मुकदमा करना शुभ माना जाता है। बुधवार वाला दिन सब चीज़ों के लिए शुभ है सुनने वालों, तो इसलिए हमें ये ज़्यादातर ये चीज़ें बुधवार को ही करनी चाहिए।

सुनने वालों, इस प्रोग्राम का नाम है सोपन विज्ञान और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस दिन क्या चीज़ें धारण करनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया दिन बुधवार वाले के बारे में, अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों, दिन बृहस्पतिवार यानी धुंधला, नवीन वस्त्र धारण करना शुभ शुभ माना जाता है सुनने वालों, नए वस्त्र पहनना धुंधला को, नवीन आभूषण धारण करना शुभ, नए आभूषण भी पहनना गहने पहनना भी शुभ माना जाता है सुनने वालों, तेल लगाना अशुभ, कि अगर हम बालों में शरीर में तेल लगाना चाहते हैं तो वो अशुभ माना जाता है सुनने वालों, तो इसलिए बृहस्पतिवार को तेल नहीं लगाना चाहिए। हजामत करना अशुभ, अगर हम बृहस्पतिवार वाले दिन बाल कटवाना चाहते हैं और आदमी लोग अपने दाढ़ी बनाना चाहते हैं तो वो अशुभ है सुनने वालों। नया जूता पहनना मध्यम, कि नया जूता पहनना है हाँ वो ठीक भी है नहीं भी ठीक, मिडल का है, पहन भी सकते हैं नहीं भी पहन सकते वो आपके ऊपर है सुनने वालों। मुकदमा करना, किसी के ऊपर मुकदमा करना अशुभ, वीरवार वाले दिन बृहस्पतिवार वाले दिन किसी पे मुकदमा नहीं करना चाहिए, वो अशुभ दिन माना जाता है सुनने वालों।

बृहस्पतिवार वाले दिन के बाद अब हम आगे चलते हैं, दिन शुक्रवार। नवीन वस्त्र धारण करना अति शुभ, कि नए वस्त्र अगर हम धारण करना चाहते हैं, नए कपड़े पहनना चाहते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। सुनने वालों, नवीन आभूषण धारण करना शुभ, नए गहने पहनना चाहते हैं वो भी शुभ है, तेल लगाना चाहते हैं शुभ, वो भी अति शुभ है। हजामत करना कि दाढ़ी बनाना, बाल कटवाना, वो भी शुभ माना जाता है। सुनने वालों, नया जूता पहनना शुभ, वो भी शुभ माना जाता है। सुनने वालों, मुकदमा करना मध्यम, शुक्रवार वाले दिन अगर हम किसी के ऊपर मुकदमा करना चाहते हैं, वो भी मिडल का है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है और मध्यम भी माना जाता है। सुनने वालों,

शुक्रवार वाले दिन के बाद अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। दिन शनिवार, सप्ताह का आखिरी दिन। नवीन वस्त्र धारण करना अशुभ। शनिवार वाले दिन नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नवीन आभूषण धारण करना अशुभ। नए गहने भी नहीं पहनने चाहिए सुनने वालों, वो भी अशुभ माने जाते हैं। तेल लगाना विशेष शुभ। अगर हम तेल लगाना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही उत्तम है सुनने वालों। हजामत करना मध्यम, वो भी कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते शनिवार वाले दिन सुनने वालों। नया जूता पहनना मध्यम, वो भी नया जूता पहन भी सकते हैं नहीं भी पहन सकते सुनने वालों। मुकदमा करना शुभ, अगर किसी के ऊपर हम मुकदमा करना चाहते हैं वो भी शुभ माना जाता है सुनने वालों।

सुनने वालों, ये सप्ताह के 7 दिन तो इन 7ों दिनों में ज़्यादातर हमने देखा कि मंगलवार और वीरवार और शनिवार में थोड़े काम अशुभ होते हैं, और बाकी रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार इन दिनों में शुभ काम ज़्यादा होते हैं। और हमें इन बातों पे ध्यान भी देना चाहिए सुनने वालों, क्योंकि नए वस्त्र धारण करना एक समय होता है। अगर हम अच्छे दिन नए वस्त्र धारण करेंगे और ज़्यादा चलेंगे और वो शुभ कार्य में आएंगे, और नए गहने पहनेंगे तो उनके खोने का डर नहीं रहेगा।

और पानी दोनों में छवि नज़र आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नज़र आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नज़र आता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रूबरू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाउन हिंदुस्तानी के रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार और प्रणाम। आज जो हम विषय लेके आए हैं, बहुत ही गंभीर विषय है, ध्यान और प्रेम, मेडिटेशन एंड लव। व्हाट इज़ द मेडिटेशन एंड व्हाट इज़ द लव? तो ध्यान क्या है, प्रेम क्या है? तो आज के जो विषय में हम यही सब बने रहिए श्रोताओं आखिरी तक, और इसके बारे में समझिए कि ध्यान और प्रेम के बारे में। तो अब हमारी आज विवान जी भी उपस्थित हैं, संजय जी अभी आने वाले हैं और शांता जी उपस्थित हैं। तो विवान जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: गुडनाफ्ट इदरेन एंड नमस्कार।
2: हाँ जी, आपने विवान के आवाज़ में सुने, और यहाँ से कहती हूँ कि आंखें भी खोलनी पड़ती है, आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए। केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। ज्योति का प्रकाश के कार्यक्रम में आपको शांता की तरफ से स्वागत और प्यार भरी राम राम प्रणाम।
0: तो क्यों ना शांता जी, जो लोग उदास बैठे हैं उनके लिए कुछ चलाया जाए?
2: जरूर से हमेशा की तरह, जो उनके उन्हें भी अच्छा लगे प्रोग्राम आगे में सुनने के लिए, उदासी जो है दूर हो जाए।
0: हाँ जरूर।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। तो राम जी तो बेड़ा पार सबका करते ही हैं, तो इतना चाहे कोई भी मन उदासी रहे। तो बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। शांता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: एकदम से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे।
0: ओके जरूर।
1: क्योंकि बहुत से ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले ऐसे बहुत से तार आ गया था और बहुत से लोग ऐसे तैयार होकर भी सुन रही है, तो यहाँ से आप जरूर से छलांग लगा देना।
0: जरूर।
1: आज के विषय जो है,
0: आज का जो विषय है उसका प्रश्न क्या है आपका?
1: प्रश्न वो है ध्यान क्या है
0: और
1: प्रेम क्या है। ध्यान और प्रेम के बारे में आज हम यहाँ से बात करेंगे।
0: तो इसी विषय में आगे बात करते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान है पर्दा हटाने की कला, यानी जैसे हमारे आंखों के सामने कोई पर्दा है और सामने दृश्य है वो नहीं दिखता है
1: जी,
0: तो वही ध्यान के माध्यम से वो पर्दा हम हटा देते हैं और सामने का दृश्य दिखने लगता है, वही कला है। और यह पर्दा बाहर नहीं, यह पर्दा हमारे भीतर पड़ा है, हमारी अंत स्थल पर पड़ा है। ध्यान है पर्दा हटाना, पर्दा बुना है विचारों से, और आपके जो विचार हैं उनसे पर्दा बुना है, विचार के ताने बानों से पर्दा बुना है, अच्छे विचार बुरे विचार इनके ताने बाने से पर्दा बुना है। जैसे हम विचारों के पार झांकने लगे या विचारों को ठहरने में सफल हो जाए या फिर विचारों को हटाने में सफल हो जाए, वैसे ही ध्यान घट जाएगा। निर्विचार दशा का नाम ध्यान है, यानी प्रेम है। तो प्रेम जो कुछ भी हो, अब बात है प्रेम की। ये तो बात ध्यान की थी, प्रेम की बात है।
1: और ध्यान में पर्दा हटाना चाहिए।
0: हाँ, पर्दा हटाना चाहिए,
1: यानी कि अपना सोच में कुछ बदलाव लाना चाहिए
0: जी।
1: अच्छा,
0: अब बात करते हैं प्रेम की
1: जी।
0: तो प्रेम जो कुछ भी हो उसे शब्दों में कहना का उपाय नहीं है, यानी प्रेम जो कुछ भी है उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है और कोई उपाय भी नहीं है शब्दों में कहने का।
1: अच्छा,
0: हाँ तो फिर क्या है?
1: हाँ तो फिर क्या है, ये मेरे भी प्रश्न है, तो फिर क्या है?
0: क्योंकि वहां कोई विचार नहीं है, प्रेम तो अनुभूति है, उसमें डूबा जा सकता है परंतु उसे कहा नहीं जा सकता। प्रेम पर विचार न करे, विचार को छोड़े और फिर जगत को देखे, उस शांति में जो अनुभव में आएगा वही प्रेम है।
1: अच्छा, जाने के प्रेम महसूस किया जाता है। इनका शब्द नहीं, इसका बात
0: उसमें डूबा जा सकता है।
1: अच्छा।
0: तो प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल भी किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। बर्दराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया था। बर्दराज एक हुए हैं व्यक्ति
1: जी,
0: उनके बारे में बात चल रही है कि उनको भी सब लोगों की भांति ही गुरु के यहाँ आश्रम में भेज दिया गया था
1: जी।
0: तो फिर आगे का जो विषय है, आगे जो बात चलेगी, एक सुंदर सा नगमा के बाद कि स्कूल में जाने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, तो क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़े और आगे की बात करें।
2: गीत निकाला जाएगा शांता जी का पिटारा से।
0: हाँ, शांता जी का पिटारा
2: भर कर फिर लाए हैं और गीत हम सब जरूर सुनेंगे राजेंद्र।
0: जरूर जी, संजय जी भी उपस्थित हो गए हैं और हमने आपका पहले इंट्रोडक्शन दे चुके हैं।
2: और क्या,
0: और आपका जो रूबरू वाली बात थी वो भी पूर्ण हो चुकी है। एकदम वैसा ही रहा,
2: यही बात। तो राजेंद्र जी क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

0: प्रेम रतन धन पायो रे, तो क्यों प्रेम रतन धन की तो बात चल रही थी सारी?
1: मैं देख रही थी राजेंद्र जी, आप ये गीत में एकदम गुम हो गए थे।
0: हाँ,
2: तो प्रेम रतन पायो, तो राजेंद्र जी प्रेम जैसे कि आज का विषय जो रखे है, इतना सुंदर रूप विषय ये जो है कि प्रेम, तो क्या कुछ और सुनाने वाले हैं आप प्रेम के बारे में?
0: हाँ, बात चल रही थी बर्दराज की। बर्दराज जब आश्रम में गए, गुरुकुल में गए, तो उनकी बात चल रही थी। तो वह आगे बढ़ते हैं उसी तरफ। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था।
1: ओहो।
0: उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरी हार मानकर उसे बोला, बेटा बर्दराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। तो बर्दराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, विद्या ददाति विनयम, विद्या उसकी किस्मत में नहीं है, उसने सोचा, और भारी मन से गुरुकुल के घर के लिए निकल गया। गुरुकुल से वो निकल गए घर के लिए। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही है। वह कुएं के पास गया, वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने की निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए?
1: जी।
0: तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए हैं, यह तो पानी खींचते खींचते इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर भी ऐसे निशान बन गए हैं, पत्थर कट गया तो इसलिए ऐसे निशान बन गए हैं।
1: जी।
0: बर्दराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से बार बार आने जाने पर ठोस पत्थर भी गहरे निशान पड़ सकते हैं, तो क्यों न मैं भी निरंतर अभ्यास में विद्या ग्रहण करने क्यों नहीं कर सकता हूँ?
1: ठोस पत्थर माने की?
0: ठोस पत्थर मतलब यानी पत्थर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है,
1: कड़क होता है,
0: कड़क होता है। हाँ। और आप उसमें रस्सी ऐसे लगाओगे तो थोड़ी वो घिस जाएगा, लेकिन बार बार उसमें रस्सी घिसटेंगे तो वो उसमें भी निशान पड़ जाएगा और घिस जाएगा, कट जाएगा पत्थर,
2: यानी कि निशान हो जाता है।
0: हाँ, रसरी आवत पा जात पे सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब है करत करत यानी रोज रोज अभ्यास करने से जड़मत जड़ से सुधार हो जाता है, सुजान कह रहे हैं। रसरी आवत जिस प्रकार से कुएं से रस्सी खींचे
1: जी।
0: और जो कुएं के बगल में पत्थर रखा रहता तो उसी पत्थर से रस्सी नीचे जाती है
1: जी।
0: तो फिर जब नीचे जाती ऊपर आती तो रोज घिसता हो
1: जी।
0: तो फिर सिल पर पड़त निशान, तो अगर पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है तो हम क्यों नहीं याद कर सकते किसी चीज को? तो ऐसे बर्दराज ने भी किया।
1: तो बर्दराज ये देख कर उसका भी एक चेतन जागा उनका।
0: हाँ।

0: क्योंकि गुरु जी कहा कि तुम पढ़ नहीं पाते हो गुरुकुल में, तुम घरे चले जाओ।
1: हाँ।
0: पर अबे घर नहीं पहुंचा, वो प्यासे के कारण वो कुआं पहुंच गया और वहां पे एक रस्सी के कारण जो सिर पे रेखा आ गए, मार्क आ गए, तो उनसे उसके मेरे ख्याल से, मैं तो अभी नहीं जानती हूँ, अब राजेंद्र जी आगे कहेगा तो मैं उसके आगे में भी कुछ समझ जाऊंगी।
1: बरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत करने लग गया।
0: अच्छा,
1: अथक मतलब बहुत मेहनत करने लग गया। गुरुजी भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया, गुरुजी ने भी उसका सहयोग किया जो मेहनत करने लग गया। कुछ ही सालों बाद यह मंद बुद्धि बालक बरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया, जिससे लघु सिद्धांत कौमदी, मध्य सिद्धांत कौमदी, सार सिद्धांत कौमदी और गिवर्ण पद मंजरी की रचना की। आगे जाकर उसने इन सब संस्कृत के जो भाष्य हैं इनकी रचना करी और वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो क्यों ना दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करती है। अभ्यास
0: और मेहनत, लगन, मेहनत,
1: बार बार जिस चीज को बार बार किया जाए उसको अभ्यास कहते हैं और मेहनत से ही होता है। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या और किसी चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको केवल पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए एकजुट हो जाइए और सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यानी जो आपको मिला है वही उतना ही बहुत है। इसलिए चाहे आपको हर समय प्रसन्न रहना, ये नहीं कि अब ये हो गया तो मेरा वो हो गया तो वो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ, तो वो कुछ नहीं। केवल आप मेहनत करिए और हर समय प्रसन्न रहिए। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय में?
2: अब कहूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कहना चाह रहे हो तो कह दूँ शांता जी?
0: एकदम
2: एकदम। तो दोस्तों, जैसे कि राजेंद्र जी और शांता जी ने और फोर्स कर रहे हैं कहने को, तो जरूर सुनाने को भी इच्छा भी कर रहे हैं। तो ये होता है कि मिलता है बहुत कुछ।
0: अच्छा?
2: मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी के करते हैं जो हासिल ना हो सकता है। राजेंद्र जी, जैसे कि अभी आपने समझाया कि बहुत मेहनत करने पड़ा और बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अब देखो, हम जाते हैं ना वहाँ योगा लेस, तो योगा लेस पे जा करके भी कितना, और वहाँ पर लेस मिलता हम सबको और सब डायरेक्शन सब प्रकार के, पर अभ्यास भी ज़रूरत है। अभ्यास जो नहीं करेंगे तो कल जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, परसों जाएंगे तो बस और ज़्यादा। तो हम सब, शांता जी, इस पे आपका क्या ख्याल है, अभ्यास और मेहनत?
0: अभ्यास करने से, जैसे हमने यहाँ कहा है, राजेंद्र जी आपने भी कहा है, अभ्यास करने से तो लोग आगे बढ़ते हैं,
2: तभी लोग आगे बढ़ सकेंगे।
0: हाँ, अगर हम भी अभ्यास नहीं करते तो आज हम यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में नहीं होते।
2: नहीं होते
0: जी?
2: अच्छा, राजेंद्र
1: जी होते
2: तो कहाँ होते? हाँ, ये प्रश्न हो जाता, तो होते कहाँ?
0: पता नहीं कहाँ, किसका हाल कहाँ पे रहता, अपने अपने घर पे होते।
2: तो दोस्तों, ये बात है कि राजेंद्र जी भी इस समय हम सब के लिए शांता का पिटारा में हाथ डाल दिए है और चला रहे हैं कंप्यूटर के ओर अपना बटन, क्योंकि एक सुंदर सा गीत के ओर हम सब बढ़ना है।
1: जरूर।
2: और पिटारा से निकाला गया कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं राजेंद्र जी?
1: गीत नेपाल का है, इस बार भारत का नहीं है,
2: नेपाली गीत चला देते हैं।
1: तो शांता जी के पिटारा से निकला है तो उसने कुछ में कुछ ना कुछ खासियत होगा,
2: कुछ ना कुछ खासियत होगा,
1: चाहे कि उसको ही चलाए।
2: चला देते हैं राजेंद्र।
1: जरूर।

0: दोस्तों जैसे कि अभी आप सुन रहे थे तो और राजेंद्र जी जो नेपाली गाना और रखे हम सब के लिए और शांता का पिटारा से निकाला हुआ और उसे हम सब सुने। और शांता जी एक यहाँ मैसेज आए हैं, मैसेज आए हैं और उन्होंने कह रहे हैं कि भाई हो सके तो सुनाना। तो ये सुनाना कह रहे हैं कि हो सके तो सुनाना, तो हम क्यों ना सुनाए इसी वक्त डायरेक्ट यहाँ फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से, और यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। और जैसे कि मैसेज में भेजा गया है कि हाथ ने पैरों से पूछा सब तुम्हें प्रणाम करते हैं, हाथ ने पैरों से पूछा कि सब तुम्हें प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं, ऐसा क्यों?
1: हाथ ने
0: ये प्रश्न पैरों से किया।
1: अच्छा।
0: तो पैर क्या कहते हैं? पैर ने बोला उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप सुन रहे हैं कि ये मैसेज जो आया अच्छा संदेश है कि हाथ ने पैरों से पूछा सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं। तो पैर ने बोला कि उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। तो राजेंद्र जी इस पे आपका क्या ख्याल है?
2: इस पे हमारा ख्याल यही है कि जो जमीन पे रहेगा उसको सभी प्रणाम करेंगे, हवा में रहेंगे तो कब तक हवा में रहेंगे।
0: सही बात राजेंद्र जी। एक बात कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले भी, आज हमारे साथ है विवान भगवान जो योंगरब के लिए कुछ अभी कार्यक्रम रखने वाले हैं मेरे ख्याल से। शांता जी विवान ऐसा है?
2: हाँ
0: हाँ, तो हाँ। योंगर के लिए कुछ सुंदर सुंदर गीत लेकर आए हैं, तो अभी उसका कार्यक्रम जरूर हम सब सुनेंगे। पर विवान काई ऑन्स वाट फॉर टैलन वाट डू यू वेलस सोक्टंस आशे ऑब्स्टाट वाट डू यू सोक्टंस आशे ऑब्स्टाट
3: वेदा
0: एंड हु डू यू दैट विवान
3: मत मंत्रस
0: एंड वेलकम मंत्र डू यू वनेर यू ऑब्स्टाट
3: ligt eraan, maar tomeo mata chapita tomeo tomeo bandhu se se gaat tomeo tomeo vidya travinam tomeo tomeo sharanam mama deva deva.
0: Vivan, dit is een hele mooie mantra, tomeo mata chapita, dat weet iedereen denk ik. Shanta ji, ye baat hai ki na, sabhi koi jyada tadat mein jante hi.
4: Sahi, aap sahi.
0: Aur Vivan, je hebt op de Vishnu school gezeten, dan heb je ook nog meer mantras daar geleerd, zeker. Maar voordat we verder gaan, dit is de ochtendgebed, hè? En wat betekent dat?
3: U bent de moeder en de vader, u bent familie en vriend, u bent wijsheid en rijkdom, u bent alles, o mijn verhevene.
0: Heel mooi verteld. En Johan, want we moeten nog verder gaan met ons programma, maar toch wil ik het sluitings, wanneer je naar bed gaat, moet je dan ook bidden?
3: Ja.
0: En hoe doe je dat?
3: Namaste sate te jagat karunaya, namaste sate sarva loka kasharanaya, namo dvaita tattavya mukti pradaya, namo brahmane vyapine shash devataya.
0: Dat is wanneer je zeg maar als je naar bed gaat. Dat zou wel fijn zijn. En wat, dat is in het Sanskriet, hè? Wat zou dat in het Nederlands betekenen?
3: Wees gegroet, gij werkelijke, o oorzaak der wereld. Wees gegroet, gij albewuste, o stut des heelals. Wees gegroet, gij zonder tweede, o schenker der verlossing. Wees gegroet, gij alomtegenwoordige en eeuwige bestaande.
0: Mooi verteld. Dosto, jaise ki aap sun rahe ki ye karyakram मैं हम सब कुछ संदेश रखा जाता है, और यौंगर जो है कि कम से कम वो जो ये कार्यक्रम को सुने तो ये जाने कि हम सब में ये एक धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, फिर भी हम सब कुछ ना कुछ संदेश लेकर आपके लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। और इसमें अब जोड़ लिया गया है यौंगर के और विवान को, विवान जो हरदम कुछ ना कुछ हर समय कुछ ना कुछ हम सब के लिए छोटा छोटा चाहे छोटा सा संदेश हम सबको सुनाने वाले हैं। पर राजेंद्र जी आज का कार्यक्रम अभी तो बाकी है।
2: हाँ, आज का कार्यक्रम बाकी है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, तुलसी की ओर बढ़ते हैं।
0: तुलसी मैया?
2: हाँ, तुलसी धरती का अमृत है, जानिए तुलसी के प्रकार और स्वास्थ्य लाभ में तुलसी का क्या प्रयोग है, कैसे तुलसी धरती का अमृत है, कैसे स्वास्थ्य लाभ में काम करते हैं, इसको हम बारीकी से जानेंगे तो सब लोगों को बड़ा इसका प्रभाव रहेगा।
4: जी।
2: तुलसी रस पिए और निरोग हो जाएं, तो तुलसी का जो रस होता है
4: जी।
2: उसको पीने से व्यक्ति निरोग हो जाता है। तुलसी मनुष्य रूप से 5 प्रकार की पाई जाती है। मनुख मुख्य रूप से यानी जो 5 प्रकार की तुलसी है मुख्य रूप से पाई जाती है, एक है श्यामा तुलसी, दूसरी रामा तुलसी, फिर श्वेत तुलसी, फिर विष्णु तुलसी और फिर वन तुलसी
4: और सारे तुलसी।
2: हाँ, और नींबू तुलसी भी, इतने प्रकार की तुलसी पाई जाती है।
0: तो ये होलैंड
2: मुख्य प्रकार से,
0: होलैंड में ये पांचों नहीं होगा मेरे ख्याल से।
2: नहीं, होलैंड पे तो मैंने 3-4 किस्म का देखा है।
0: वो तो एक ही बाकी है, तो वो भी आ जाएगा।
2: आ जाएगा। वन तुलसी भी देखा है, विष्णु तुलसी भी देखा है, रामा भी देखा है और सफेद तुलसी भी देखा है। नींबू तुलसी यहाँ नहीं देखने को मिला।
0: नहीं देखने का मिला। अच्छा, तो चलो उसके हम लोग के लिए, हम सभी सुनने वालों के लिए इस पे ध्यान देना कि कहीं भारत में जाए तो नींबू तुलसी का और बी लेता ना ना।
2: हाँ,
0: ताकि होलैंड में भी धीरे धीरे सचर सके, क्योंकि पहले शायद कुछ नहीं होगा और धीरे धीरे अब देखो 4 प्रकार का होलैंड में आप देख ही चुके हैं, तो अब 5वां भी आना जल्दी हो जाएगा।
2: इन 5 प्रकार की तुलसी विधि द्वारा अर्क निकाल कर तुलसी का निर्माण किया गया है। यह संसार की एक बेहतरीन एंटीऑक्साइड, एंटीबायोटिकल एवं एंटीवायरल, एंटी फ्लू, एंटीबायोटिक, एंटी इफ्लेमिस्ट्री व एंटी डिलीज है। तुलसी अर्क के बाद 1 बूंद 1 गिलास पानी में या 2 बूंद 1 लीटर पानी में डालकर 5 मिनट के बाद उस जल को पीना चाहिए। इससे पेयजल विष और रोगाणुओं से मुक्त होकर स्वास्थ्य वर्धक पेय हो जाता है। तुलसी अर्क 200 से अधिक रोगों में लाभदायक है, जैसे कि फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, जुखाम, खांसी, फ्लैग, मलेरिया, जोड़ों का दर्द है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर, शुगर, एटर्जी, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, जलन, मूत्र संबंधी रोग, गठिया, दम, मरोड़, बवासीर, अतिसार, आँख का दर्द, दाज, खाज, खुजली, सर दर्द, पायरिया, नक सिर, फेफड़े का सूजन, अल्सर और हार्ट ब्लॉकेज आदि में। इस प्रकार से तुलसी के जो मुख्य रूप से स्वस्थ कर देता है इन रोगों में, रोगों को तुलसी अर्क से स्वस्थ हो जाते हैं। तुलसी एक बेहतरीन विषनाशक तथा शरीर हटा के विष टॉक्सिन को बाहर निकाल देती है। टॉक्सिन्स हमारे बॉडी बनाती है। योग में हम लोग कपालभाति से टॉक्सिन को बाहर करते हैं या स्वेटिंग के अनुसार स्वेटिंग करते हैं, जैसे स्वेटिंग होती है उससे टॉक्सिन बाहर होते हैं। तो तुलसी के अर्क को पानी में थोड़ा मिला के पिया जाए तो टॉक्सिन्स उससे भी बाहर निकलते हैं।
4: यानी कि तुलसी के दल, तुलसी के पत्ता को,
2: नहीं, तुलसी का पत्ते का अर्क बनता है, उबाला जाता है उसको।
4: अच्छा।
2: डिस्टिलेशन प्लांट में।
4: अच्छा।
2: और जो डिस्टिलेट हो जाता है ऊपर का जो भाप होता है उसको डिस्टिलेट बोलते हैं।
4: अच्छा।
2: उसका जो 2 बूंद उसमें डाल दिया जाता है तो उससे ठीक हो जाता है, अर्क उसको बोलते हैं।
4: अच्छा।
2: तुलसी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाती है।
4: स्मरण शक्ति
2: यानी जो हमारी याददाश्त है, जैसे कुछ चीज करे और सब भूल जाए।
0: हाँ।
2: तो वो न चाहे भूले, याद रहे, वो तुलसी वो उसको भी ठीक करती है।
0: मुझे भी पीना पड़ेगा राजेंद्र जी, मैं भी टेलीफोन भूल जाता हूँ आज।
2: हाँ, तो आपको ब्राह्मी और तुलसी दोनों चीज चाहे पिए।
0: तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि भूलने के लिए भी कुछ हंसी मजाक भी हो जाता है कार्यक्रम में, पर ये इनके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो आगे राजेंद्र जी क्या कहते हैं?
2: आगे कहते हैं कि तुलसी शरीर के लाल रक्त सेल्स यानी हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में अत्यंत सहायक होता है,
4: यानी कि रोद ब्लूत लेखांपियस।
2: हाँ, उसको बढ़ाने में भी अत्यंत सहायक होता है तुलसी। और तुलसी भोजन के बाद एक बूंद सेवन करने से पेट संबंधी बीमारियां बहुत कम लगती है। तुलसी के 4-5 बूंदे पीने से महिलाओं को गर्भावस्था में बार बार होने वाली उल्टी की शिकायत ठीक हो जाती है। आग के जलने व किसी जहरीले कीड़े के काटने से तुलसी को लगाने से विशेष राहत मिलती है।
0: तो राजेंद्र जी, इतना संदेश आप दे रहे हैं और यहाँ पर गुलजार जी का वर्ड्स यानी कि उनका कहे हुए, जो वक्त बीत रहा है वो सिर्फ वक्त नहीं है, वो जिंदगी भी है। तो राजेंद्र जी, इस पे हम सबको ध्यान देना है। और अभी तो हमारा न्यूज़ और कमर्शियल जो, उसको भी ध्यान देना है। तो पहले हम सब वो चला देते हैं और फिर दोस्तों आज कार्यक्रम मज़ेदार और एक कार्यक्रम है जिसमें अभी काफ़ी संदेश बाकी पड़े हुए हैं जो अभी राजेंद्र जी और शांता जी मिल करके और हम भी साथ में हैं स्टूडियो में भी, विमान भी जो है। तो अभी हम सब और भी संदेश आपके लिए रखने वाले हैं, पर उस ओर बढ़ने से पहले राजेंद्र जी, पहले आप कमर्शियल और न्यूज़ की ओर।
2: जरूर।

0: फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
1: कहने के तो ये है कि किसी ने भेजा कि जिसके पास एक अच्छे दोस्त है ना, जिसके पास एक अच्छे दोस्त है उसे किसी भी दर्पण की जरूरत नहीं है।
2: आईना। और आईना ये खुद कहता है, नाम खुद कहता है, जो एक बार दिखा दिया वो फिर से दोबारा नहीं आता। आईना।
1: तो आगे का कार्यक्रम में क्या सुनाने वाले हैं राजेंद्र जी आप?
0: आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए आगे की ओर चलते हैं। दमा व खांसी में तुलसी के दो बूंदे थोड़ी सी अदरक के रस के साथ शहद से मिलाकर सुबह दोपहर शाम सेवन करें तो दमा ठीक हो जाता है। यदि मुंह में से किसी प्रकार की दुर्गंध आती हो तो तुलसी की एक बूंद मुंह में डालकर दुर्गंध दूर हो जाएगी। दांत का दर्द, दांत में कीड़ा लगना, मसूड़ों में खून आना, तुलसी के चार पांच बूंद पानी में डालकर कुल्ला करना चाहिए। दांत का दर्द, कान का दर्द, कान का बहना और तुलसी हल्का गर्म करके एक एक बूंद कान में टपकाइए। नाक में पीनूस रोग हट जाता है, इसके अतिरिक्त फोड़ी फुंसियाँ भी निकल आती है। दोनों रोगों में बहुत तकलीफ होती है। तुलसी को हल्का सा गर्म करके एक एक बूंद नाक में टपकाइए। गले में दर्द, गले व मुँह में छाले, आवाज़ बैठ जाना, तुलसी के चार पांच बूंद गर्म करके पानी में डालकर कुल्ला करना चाहिए। सर दर्द, बाल कहना, बाल सफ़ेद होना व सिकरी तुलसी की 8-10 मिलीलीटर हर्बल हेयर ऑयल के साथ मिलाकर सर माथे तथा कनपट्टियों पर लगाएं। कनपट्टी मतलब ये कान के बगल में,
1: कनपट्टी मतलब बोले तो कान।
0: हाँ, कान।
1: सूरीनाम में ऐसे होते थे ना, बोले अबे कान कैसे, बोले कनपट कनपटिया पे लगा बे ना।
0: हाँ।
1: ऐसे। हाँ। और राजेंद्र जी बड़ा जोर से मारते थे।
0: हाँ।
1: वहाँ स्कूल पे भी।
0: हाँ।
1: कभी बदमाशी हो जाता था ना तो कान पकड़ के इसे मरोड़ देते थे। तो देखो अब जानते थे हम सब, जो जानते कि तुलसी का और उसका यानी कि बनाकर कुछ लगाना चाहिए ना गार के।
0: तुलसी के 8-10 बूंदे मिलाकर शरीर में मलकर रात्रि में सोए तो मच्छर भी नहीं काटेंगे।
1: मच्छर भी।
0: कूलर में पानी में तुलसी के 8-10 बूंद डालने से सारा घर विषाणु और रोगाणु से मुक्त हो जाता है तथा मक्खी मच्छर भी घर से भाग जाते हैं। जुएं व लेखे तुलसी और नींबू का रस समान मात्रा में मिलाकर सर के बालों में अच्छे तरह से लगाएं। 3-4 घंटे तक लगा रहने दें और फिर धोएं अथवा रात्रि को लगाकर सुबह सर धोएं। जुएं व लेखे सब मर जाएंगी। त्वचा की समस्या में नींबू रस के साथ तुलसी के 4-5 बूंदे डालकर प्रयोग करें। त्वचा यानी
2: चमड़ा, हाइट,
1: हाइट ना,
0: स्किन,
1: स्किन,
0: स्किन प्रॉब्लम के लिए। तुलसी में सुंदर और निरोग बनाने की शक्ति है। यह त्वचा का कायाकल्प कर देती है। यह शरीर के खून को साफ करके शरीर को चमकीला बनाती है। तुलसी की दो बूंदे एलो जैम क्रीम में मिलाकर चेहरे पर सुबह व रात को सोते समय लगाने पर त्वचा सुंदर व कोमल हो जाती है तथा चेहरे से प्रत्येक प्रकार के काली छेरी, छाइयाँ, कील, मुहासे व झुर्रियाँ नष्ट हो जाती है। सफ़ेद दाग, 10 मिलीलीटर तेल व नारियल तेल के साथ तेल में 20 बूंदे तुलसी डालकर सुबह व रात सोने से पहले अच्छी तरह से मले। तुलसी के नियमित उपयोग से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होने लगता है, रक्त के थक्के जमने कम होते हैं व हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम भी हो जाती है। तुलसी को किसी भी अच्छी क्रीम में मिलाकर लगाने से प्रसव के बाद पेट पर बनने वाली लाइनें, स्क्रैच मार्क्स दूर हो जाते हैं। सेहत भरी बातें, योग व प्राकृतिक चिकित्सा के लिए सीधे तुलसी दल से जुड़े और उसको आगे की तरफ करें। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तुलसी के बारे में?
1: नहीं कहना चाहूँगा तुलसी के बारे में, क्योंकि मैं ये शांता जी भी अब उंगली उठा दी है तो पहले लेडीज फर्स्ट।
0: हाँ।
1: राजेंद्र जी, तो शांता जी पहले।
3: हाँ जरूर।
2: हाँ तो मैं तुलसी के बारे में अभी कुछ शब्द कहूंगी डच भाषा में। तुलसी उग बकेंद आस है लख बासिलिकम एसन है लख प्लांट एट इंडिया इन एथ हिंदुइज्म सेन तुलसी ब्लादरन एन एसेंशियल अंडरटेल इन द फरएरिंग फन विष्णु जी कृष्ण जी एन राम जी नेत आस हेनप इस उग तुलसी एन प्लांट दी फन वेग सेन फरमेन द थेरापेटिसे पोटेंशियल इन द वेतनशापलक बालांग स्टेलिंग स्टार्ट। तो जैसे अभी राजेंद्र जी तुलसी के महत्व बताए कि इतना ढेर थे, तो ये भी वेतनशापलक बालांग स्टेलिंग में एक भी प्रयोग किया जाता है।
1: तो राजेंद्र जी
0: जी,
1: जैसे कि मैं भी कुछ कहने वाले थे
0: जी,
1: तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। इच्छाओं का क्या, वो तो पल पल बदलती है। और हमारा एक फास्ट जो लॉयस्ट्रार है रोटरडम शहर से, रोटरडम शहर से भाई रूपचंद जी, उन्होंने समय लेकर के और सबके लिए बनाकर ये कार्यक्रम को वो सुनते हैं, और ये कार्यक्रम को सुन करके वो अपना और मूर्ति और शंख आदि किस प्रकार से रखना चाहिए, बना बना करके फोटो बना करके और एनवलप में भर के हमारे लिए और आपके लिए यहाँ ला करके रख दिए हैं। तो भाई रूपचंद जी को बस यही कहना चाहूँगा कि भाई आपके और ये जो आप कोशिश करके बना करके हम सबके लिए यहाँ रोहतक शहर से और लेकर के यहाँ दनाख में ला करके हम लोग के ऑफिस न्यूटन स्ट्रैट और 25 पे ला करके हम सब के लिए रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके हेल अरख दंकर फॉर भाई रूपचंद जी। और हम सब आगे के कार्यक्रम में देखा जाए कुछ, राजेंद्र जी अभी कुछ संदेश और है या एक गीत की ओर हम बढ़ सकते हैं?
0: हाँ, पहले हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर एक कहानी के माध्यम से हम अगला सुनेंगे। ये अगले प्रोग्राम जो अगला जो कार्यक्रम है उसमें कहानी, तो उसको सुनेंगे। उससे पहले क्यों ना एक सुंदर सा गीत हो जाए।
1: एकदम।
4: मेहनत